मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार

बार है शक संबत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि। तदनुसार 21 मई सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार

0: उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि की माटी चंदन, आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराएं।

राम नाम पर नाम ते प्रीत प्रतीत भरोस सो तुलसी सुमरत सकल सगुन सुमंगल कोस। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण है और राम नाम में ही जिनका प्रेम विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। आइए श्री राम भजन सुने, स्वर है हरिओम शरण का।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं साईं जी की आरती। स्वर है अनुराधा पौडवाल और साथियों का।
1: शिरडी के साईं बाबा की स्तुति शब्दों में संभव नहीं है, इसीलिए तो भावनाओं के पुष्प लिए, भक्ति का प्रदीप लिए, कामनाओं की आकांक्षा लिए हम सब सच्चे मन से साईं की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं।

इसी आरती के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। विषय होगा प्राकृतिक संसाधनों का कृषि में महत्व। प्रातः 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे अनूप जलोटा। संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण होगा 6:50 पर। 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए बुंदेली काव्य पाठ। कवि होंगे कल्याण दास साहू। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 7:30 पर। 8:30 पर भोपाल से अमरेली करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 सुनिए लोकरंग कार्यक्रम में विनीता कुशवाहा को। 9:30 पर हम प्रसारित करेंगे एक ही गायक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल मिश्रा के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। 10:00 सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:30 पर आनंद लीजिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। दिन में 1:00 सुनिए महिला कार्यक्रम, इसमें महिलाएं सुनेंगी वार्ता, साथ ही होगी सौंदर्य सलाह है।

ये प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी शाम 6:30 पर सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे जितेंद्र कुमार यादव। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जनउपयोगी चर्चाओं और लोक गीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। काव्य पाठ में सुनिए कमलेश प्रसाद राजपाली से उनका कविता पाठ। और आज की सीख का विषय होगा जी को जो स्वभाव है जोन जाए ना जीसे नीम न मीठी होए खाओ घी गुर्गी से। रात 8:00 भोपाल से हम रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। आज हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और रात 9:45 पर इनसाइट। रात 10:00 आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम और रोजगार सूचना। शाम 6 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: और अब सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित एवं मध्य प्रदेश के सभी प्राइमरी केंद्रों द्वारा अनुप्रसारित कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। दिन में 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12 बजे सुनिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 2 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। 2:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। और 3 बजे हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम हाइलाइट्स। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज के परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों का कृषि में महत्व के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि मानव जीवन की प्राचीन संस्कृति है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, कृषि भी उन्नति की ओर आगे बढ़ती गई। और आज हम खेती के बारे में कुछ ऐसे भी छुपे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसका के सीधा कृषि की उपज पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में किसान भाई यही सोचते हैं कि कृषि में उपज सिर्फ रासायनों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक ही कृषि की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक तो इनका उपयोग कृषि में लाभ दे सकता है, लेकिन टिकाऊ ढंग से नहीं। अच्छा, इन रसायनों के अधिक उपयोग से वर्तमान में खेती में अनेक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जैसे कि लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या घट जाती है, जिसका प्रभाव सीधा मृदा स्वास्थ्य पर पड़ता है और पैदावार भी बुरी तरह से अनिश्चित समय के लिए प्रभावित होती है, और जिसका समाधान हम प्रकृति से बाहर खोजते हैं, जबकि कृषि का पूरा दामोदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। यदि कोई किसान कम उपज को लेकर के समस्या बताता है तो यकीन मानिए कि उसका समाधान भी जमीन के अंदर छुपा हुआ है। किसान भाइयों को इसका विश्लेषण थोड़ा प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और किसान जब जमीन में कोई फसल बोता है तो उसे पालने और बढ़ाने का काम जमीन में मौजूद अनेक प्रकार के सूक्ष्म जैव, जैसे कृषि उपयोगी जीवाणु हुए, कवक हुए, यही पौधे को सींचने का काम करते हैं, तथा जलवायु कृषि उपज बढ़ाने में साथ भी देती है। और जब हम किसान भाई मिट्टी की

0: उर्वरता को तथा प्राकृतिक जलवायु को खराब कर देते हैं, तो खेती की अनेक समस्याएं और भी जटिल होती चली जाती। हम बात करते हैं प्राचीन काल में, इससे पूर्व में प्राकृतिक संसाधन ही कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त थे। जैसे जैसे हमारा रहन सहन बदलता गया, हमारी कृषि की उपज भी बढ़ती गई, जो कि किसी न किसी रूप में जैव विविधता से जुड़ी रहती थी, जिसमें सूक्ष्म जीव जो फसलों में रोग नहीं लगने देते थे और साथ में पौधों में पर्याप्त पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते थे। केचुआ जमीन को भुरभुरा बनाता था और उसमें हवा के लिए छिद्र, मिट्टी में छिद्र के रूप में हवा भी पास होती थी और मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता था और उपजाऊ बनाता था। इसकी दूसरी तरफ बहुउपयोगी कीट जैसे तितलियां हुई, जो परागण में बहुत सहायता करती थीं और जिसके कि घर में गाय, भैंस व बैल पाले जाते थे, जिनका गोबर, मूत्र खाद के रूप में खेती में उपयोग किया जाता था। खेतों की मेड़ पर जो पौधे लगाए जाते थे वो भी बहुत फायदेमंद होते थे। यह खेत की मिट्टी का कटाव तो रोकते थे, साथ साथ में हवा की तेज गति को भी कम करने में सहायक होते थे तथा भूमि में प्राकृतिक रूप से उपजाऊ व टिकाऊ उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कृषि करने के साधनों को अपनाने की अधिक आवश्यकता है। जैसा हम आज के समय में देख रहे हैं, मृदा का स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता जा रहा है। और बिगड़ क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ जो जिम्मेदार है वो सिर्फ रसायनों का अत्यधिक प्रयोग ही इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ और टिकाऊ उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कृषि करने के साधनों को अपनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसमें कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद उपयोग कर सकते हैं, जीवाणु खाद उपयोग कर सकते हैं, फसल के अवशेष व प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट हुआ, जिप्सम आदि द्वारा पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। इससे आपकी कृषि की उपज बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में उपलब्ध मित्र कीट व जैविक कीटनाशक द्वारा फसलों को हानिकारक पादप रोगजनक कारकों से भी बचाया जा सकता। इसके साथ साथ प्राकृतिक पद्धति द्वारा कृषि पर भी भारत सरकार बहुत जोर दे रही है। पंचगव्य का उपयोग किसान भाई 5 लीटर पंचगव्य लेकर के प्रति बीघा के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तने के पास छिड़काव करें, जिससे उनकी पैदावार बहुत अच्छी होगी और जो उससे उत्पाद होगा, जो उससे बीज मिलेगा, वो भी अधिक स्वादिष्ट होगा। तो आशा करते हैं हम किसान भाइयों से कि बताए गए प्राकृतिक संसाधनों को कृषि में अपनाएंगे और अपनी मातृरूपी भूमि को स्वस्थ रखेंगे तथा मृदा को भी सहेजेंगे।
1: आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं अनूप जलोटा, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूं? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूं जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया।

जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही सुगंध आपके भीतर समाएगी। बगिया में रोपे पौधे और अपनी संतान से हर कोई बेइंतहा प्यार करता है। बच्चों को हंसते बोलते तुतलाते देख हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। दुनिया के हर गम से बेखौफ उनकी कर्णप्रिय आवाज तनाव से दूर ले जाकर आनंद के सागर में डुबो देती है। इसी प्रकार ये आज काम के नहीं रहे तो हमें लगने लगा यह कारण ही जगह घेरे है। संसार में ऐसे कई प्राणी विधाएं और धरोहरें हैं जो एक उम्र भर समय के बाद इतने काम की नहीं रहेंगी, तो क्या हम उन्हें अपने से दूर या नष्ट कर देंगे। बेटी की बात मन को छू गई। आंखों की पुतलियों पर छाया स्वार्थ का जाला हट गया। आने वाले कल की कल्पना मात्र से ही हाथ कपकपाने लगते हैं और पैर डगमगाने लगते हैं। बुलंदियों पर रहे तारे जमीन पर आते दिखाई लगने लगते हैं। ऐसे में एक मित्र के पिता का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। वो मित्र किसी न किसी बात को लेकर उन पर हमेशा चिल्लाता रहता है। मित्र को कई बार समझाने के प्रयास किए कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को उचित सम्मान और प्यार की अधिक आवश्यकता होती है। आपका थोड़ा सा लगाव और मान उनकी सेहत के साथ ही उनकी उम्र के कई साल और बढ़ा देता है। एक दिन नितांत अकेले में

0: उस बुजुर्ग पिता ने रुंधे गले से अपने परिश्रम त्याग और बेटे के लिए अपने जीवन के सुख ऐश्वर को दी गई तिलांजलि की दास्तान सुनाई तो मुझे उनकी महानता का एहसास हुआ। पत्नी के निधन के बाद 5 साल के बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी, नौकरी और मासूम के लालन पालन में तालमेल बैठाना, रिश्तेदारों और परिजनों के दबाव के बावजूद दोबारा विवाह के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकराना एक अच्छे पिता की ही मिसाल है। बाद में मैंने मित्र को पिता पुत्र का एक किस्सा सुनाया। एक दिन पिता अपने बेटे से पूछते हैं, सामने पेड़ की डाल पर कौन सी चिड़िया बैठी है? वो बताता है, कोयल। यही प्रश्न 3-4 बार पिता द्वारा पूछने के बाद पुत्र छल्ला कर कहता है, एक बार बता दिया ना, कोयल है, दिखाई नहीं देता क्या? तब पिता बताते हैं कि बचपन में तुमने मुझसे 40 बार यही सवाल किया था और हर बार मैंने तुम्हें बताया था, कोयल। दोस्तों, वृद्धावस्था बचपन का पुनरागमन होता है, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। अतएव हमें वृद्धों से व्यवहार के समय ध्यान रखना होगा कि उनको उचित सम्मान और अतिरिक्त प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बच्चे सबका ध्यान अपनी ओर हमेशा खींचना चाहते हैं, उसी प्रकार वृद्ध हमारी जरा सी उपेक्षा से घबरा जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में हमें धैर्य से काम लेना होगा। अतः जब भी किसी वृद्ध को देखें तो अपने बचपन को, बचपन में मिले प्यार दुलार और संस्कार को याद करें, तब उनके प्रति हमारा मन कृतज्ञता से भर उठेगा और वे कभी हमें अनुपयोगी नहीं लगेंगे। वृद्ध हमारे घर की शोभा है जो सभी को नसीब नहीं होती। उनके पास अनुभवों का ऐसा पिटारा है जो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का चुटकियों में हल ढूंढ लेती है, हमें सुरक्षित होने का एहसास दिलाती है। कल्पना कीजिए, बिना वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों के घर की, जिसकी हर छोटी समस्या के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आइए वृद्धों के प्रति अपनी विचारधारा को सकारात्मकता से विस्तार देते हुए उनके उचित आदर एवं सम्मान की दिशा में पहल अपने ही घर से करें।
1: ये था आज का चिंतन। श्रोताओं, वृद्धजनों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि होंगे कल्याण दास साहू और फिल्म संगीत सुनिएगा 7:30 पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्रयात्रायाः पंचमं अंतिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
3: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन,

0: लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक

0: और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. Indian Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान

0: बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर

0: रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

0: यादव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा, इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
1: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था, मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे, इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है, किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड की ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ईकेवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि हैं कल्याण दास साहू।
1: एक रचना समर्पित कर रहा हूं। ओरी लाज राखियो मोरी, विनय करत कर जोरी। ओरी लाज राखियो मोरी, हो बीजू ना।

एक रचना जेठ मास की जो चल रही है गर्मी, उसके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ कुछ पंक्तियाँ। जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, लू लपटों की थपन मुबारक हो सब खो, लू लपटों की थपन मुबारक हो सब खो, उगल रहे हैं अगन मगन सूरज दादा, उगल रहे हैं अगन मगन सूरज दादा, बगड़ूरों की धपन मुबारक हो सब खो, जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, भपका बारी भपन मुबारक हो सब खो, बेचैनी उर हपन मुबारक हो सब खो, झिरत पसीना खूब देह भी जी रावे, घमोरियों की घपन मुबारक हो सब खो, जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, दो पहरी की झपन मुबारक हो सब खो, काम धाम की चपन मुबारक हो सब खो, डिगत खूब औसान भयंकर गर्मी से, और रोम रोम की कपन मुबारक हो सब खो, जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, लू लपटों की थपन मुबारक हो सब खो। कुछ पंक्तियां और हैं। धमक उमस की गपन मुबारक हो सब खो, पपीहरा की जपन मुबारक हो सब खो, पोषक बदरा घाम तेज आंधी पानी, छप छप करती छपन मुबारक हो सब खो, जेठ मास की तपन मुबारक हो सब खो, लू लपटों की थपन मुबारक हो सब खो। कुछ पंक्तियां और गर्मी की रुत के लिए निवेदित कर रहा हूँ। सांस

0: गए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जय हिंद जय भारत।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि थे कल्याण दास साहू। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

यह आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति की फिल्म असली नकली में। गीतकार थे SH बिहारी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। अगला गीत सुनेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सब का साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म डकैत का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत आरडी वर्मन साहब का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत। आवाजें थी अलका याग्निक उदित नारायण की, संगीतकार आनंद मिलन और गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया है फिल्म रखवाला से। आवाजें हैं जानकी और अमित कुमार की, गीतकार समीर और संगीत आनंद मिलिंद का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।
1: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने

0: कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था।

0: और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट अब आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका।
0: एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं।

0: परीक्षण 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण

गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-08 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से

नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी। पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विनीता कुशवाहा। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं लोक शैलीबद्ध गीत से, तो आइए सुनें।

लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये चेतावनी। कलाकार एक बार फिर विनीता कुशवाहा, तो आइए सुने ये चेतावनी।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विरह गीत, कलाकार थी विनीता कुशवाहा। अगला गीत आप सुनेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गारी कलाकार थी विनीता कुशवाहा। इसी गारी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी विनीता कुशवाहा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है एक ही गायक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल मिश्रा के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, विशाल मिश्रा एक बहुमुखी भारतीय संगीतकार, गायक और गीतकार हैं। लखनऊ में पले बढ़े और कानपुर से जुड़े उन्होंने डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत की शान से अपना सफर शुरू किया और फिल्म कबीर सिंह के कैसे हुआ और पहला प्यार जैसे गीतों ने उन्हें बॉलीवुड का शीर्ष गायक बना दिया। कुछ खास बातें और जानेंगे, लेकिन सुनते हैं फिल्म कबीर सिंह का ये प्यारा सा गीत।

मित्रों, विशाल मिश्रा का जन्म 8 दिसंबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ और शिक्षा उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो न्यू वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ से पूरी की और लॉ में उन्होंने स्नातक भी किया। और मित्रों, संगीत के प्रति उनका जुनून 3 साल की उम्र से ही दिखने लगा था और 10 साल की उम्र तक उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया था। साथियों, टीवी से शुरुआत उन्होंने 2013-14 में दूरदर्शन के रियलिटी शो भारत की शान में हिस्सा लिया और विजेता बने। यहीं से दिग्गज संगीतकार ललित पंडित ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका मार्गदर्शन किया। सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है नोटबुक।

मित्रों, विशाल मिश्रा ने 2016 में तमिल फिल्म देवी और हिंदी फिल्म तूतक तूतक तूतिया में संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 2017 में फिल्म में करीब करीब सिंगल का गाना जाने दे कंपोज करके उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली। इसके अलावा 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। उन्होंने इस फिल्म में कैसे हुआ और पहला प्यार जैसे सदाबहार गीत गाए और कंपोज किए, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। वो हम पुरस्कार आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इन्हीं की आवाज में फिल्म योद्धा का ये प्यारा सा गीत।

90. मित्रों, अपनी भावपूर्ण आवाज और शानदार संगीत संयोजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक एल्बम से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुछ जानकारी हम आपको और बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मित्रों, विशाल मिश्रा एक ऐसी आवाज जिन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए, उनमें से कुछ फिल्में इस प्रकार से हैं, जैसे कबीर सिंह, कैसे हुआ, पहले भी मैं, एनिमल, तुम हो तो, मंझा, नसीब से सत्य प्रेम की कथा। विशाल मिश्रा लगातार बॉलीवुड

कई फिल्मों जैसे योद्धा, क्रू और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी बेहतरीन संगीत तैयार कर चुके हैं। तो सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और प्यारा संगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आर आर आर यानी ट्रिपल आर का ये प्यारा सा गीत। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विशाल मिश्रा की ही आवाज में चल तेरे इश्क में। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है, तो आइए सुने इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत कार्यक्रम के आखिर में।

इसी गीत के साथ ही एक ही गायक कलाकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे विशाल मिश्रा के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरीहार तहसील में सबसे पहले एचएलबी का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, एसडीएम सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। एसडीएम बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक

चालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्धस्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही न हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सवरंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोकराग का कार्यक्रम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत और अब हम आपको सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। तो आइए सुनिए।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत कलाकार हैं निर्मला बैन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीत कलाकार थी निर्मला बहन चंदन और संतराम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं और सुनते हैं एक और छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लक्ष्मी शर्मा और चंदन की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

इसी छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे लोकराग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, ये गीत हमें लिया था फिल्म सिंदूर से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। इस गीत को पसंद किया था आप सबने। सबसे पहले श्रोताओं, जो मेल के माध्यम से आपने हमारे पास अपनी फरमाइश भेजी है, हम उनको शामिल करते हैं ताकि आपको शिकायत न रहे कि हम मेल शामिल नहीं करते। तो आइए शुरुआत करते हैं मेल से। ये 10:25 पर हमें मेल प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। 10:25 पर ही प्राप्त हुआ है ये मेल। भेजने वाले हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और एसके पप्पी। 10:23 पर यह मेल प्राप्त हुआ है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। 10:14 पर हमें ये मेल प्राप्त हुआ है ग्राम जाखोस से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और उनके संगी साथी। परभणी महाराष्ट्र से 10:14 पर यह मेल प्राप्त हुआ है। भेजने वाले हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और उनका पूरा परिवार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपकी ही पसंद पर एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मीरा का मोहन। इस फिल्म का गीत आवाज थी मोहम्मद अजीज की, गीतकार थे इंतिबर और संगीत अरुण पौडवाल का था। पसंद आप सबकी मेल के माध्यम से ये पसंद भेजी है जनकपुरी सहारनपुर से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी परल और विलास डिकेस्ट्रो। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है रिंगरी छत्तीसगढ़ से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चंडीगढ़ सिटी से ये मेल आया है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। अगला गीत आपकी पसंद का हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत मधुर आवाज थी अनुराधा पौडवाल की, संगीत नदीम श्रवण का था। इस गीत को पसंद किया था आप सबने शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी, मनोज नामदेव, सुशील जैन, अरुण कनौजी, असन्न, संजय सोनी, लालू और उनके संगी साथी। ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं श्रीमती पूजा तिवारी, अमित तिवारी, आशा तिवारी, राम बिहारी शास्त्री, राजा भैया वह एवं उनके परिवार वाले, कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या और उनके संगी साथी। ग्राम कटकहा जिला पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बेश, कृष्णा, प्रांसी सेन। जमतपुरा पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता देवीदी नहरवार, श्रीमती सुनीता, दिनेश।

कपिल, पूजा देवी। ग्राम कनाय करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेली जिला बांदा से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सत्य प्रकाश अहिरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, राम हित, ओम प्रकाश, राम रतन, राजकुमारी और इनके परिवार वाले। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमजी चक्रवर्ती ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है सड़क। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। पसंद किया है आप सबने। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू। मोहाली चंडीगढ़ टीडी से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक, अग्नि शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। गीत सुनने से पहले एक छोटा सा अंतराल।

इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने मित्र संतोष ताम्रकार को नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र की ओर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे फरिश्तों की।
2: हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार,
1: किससे बातें हो रही है हमारी?
2: आज कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी रंगीन लेटर वाला बोल रहा हूँ मैम।
1: नियाज मोहम्मद जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे को फोन लगा है मेरा आपके कार्यक्रम में
1: जी।
2: वैसे मैं लेटर लिखता रहता हूँ आप।
1: जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका नियाज जी। नियाज मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फरिश्ते के तौर पर आप किसे मानते हैं? हम जिंदगी में फरिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
2: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
1: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
2: यही बताता रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्तित्व के भाव को अच्छी तरह से अगर उसको व्यवस्थित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में कहलाएगा। यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है और जो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता
1: जी। फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
2: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं।
1: जी जी, चलिए आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की, और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छी आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
1: जी।
2: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे
1: जी।
2: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियां जो होती है ना,
1: हाँ,
2: उसके भाव वो घर कर जाती है
1: जी।
2: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप और जो होते हैं,
1: हाँ,
2: आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
1: जी,
2: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हम इसी से आपसे सुनते,
1: हाँ,
2: हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
1: चलिए अच्छा लगा आपसे मैडम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया
2: जी। जी
1: नमस्ते।
2: दोस्ताना गाना का गाना है मैम
1: सर, यहाँ
2: रहे ये दोस्त हमारा
1: जी। यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद का सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सकें।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
1: बिल्कुल,
2: बहुत अच्छा लगा
1: जी
2: आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
1: जी,
2: और आप
1: आपको भी,
2: हम सब मिलकर रहे
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: जी मैडम,
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी मैडम, जी।
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता?
1: जी
0: ऐसा कभी हुआ?
1: ऐसा हुआ है।

0: मैडम जी।
1: तो बताइए वो वाकया क्या था।
0: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। हम वो जी कल के लिए थे, गया जी गए थे हम।
1: हाँ हाँ
0: तो अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान, तो हमें बहुत समस्या आ गई थी। हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था।
1: हाँ,
0: तो हमारे साथ में एक मित्र गया था हमारे साथ
1: हाँ,
0: में,
1: हाँ, हाँ,
0: तो उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए,
1: हाँ,
0: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो भाई, तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है।
1: हाँ,
0: लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले। एक बार आपका परिचय फिर दे दें।
0: जी मैडम, जी मैडम, हम अपने जिला दमोह से बोल रहे हैं,
1: हाँ
0: गिरधारी सेन नाम है हमारा। जी मैडम,
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरधारी सेन जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।

0: प्रसारण बहुत पुराना चाहता हूँ, ये बहुत पुराने कार्यक्रमों से भी जुड़ाव रहा है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है और
1: जी
0: हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी
0: जी
1: आज बात आपके गीत हमारे में, हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारणवश एक पेपर मेरा मिस हो गया था।
1: जी
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे, तो
1: जी
0: उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला, तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय। तो मैंने कहा ये इस तरह के लोग जो हैं
1: हाँ,
0: वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के
0: जी
1: रूप में आए थे।
0: जी मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ,
1: जी
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान
1: जी
0: हमेशा है और रहेगा।
1: जी शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन
0: जी
1: के लिए
0: जी
1: वो
0: जी
1: आधारशिला बनाते हैं। माता पिता
0: बिल्कुल,
1: तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल, जीवन उन्हीं से शुरू होता है। सही,
1: जी बिल्कुल
0: जो मायने में जीवन है
1: जी
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात
0: जी
1: करके। उम्मीद करते हैं
0: जी
1: आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा रह करेंगे
0: जी
1: और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: जी
1: कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके
0: जी
1: लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ, वैसे तो हुआ है ऐसा,
1: जी बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है।
1: तो आपके जीवन में
0: जब
1: वो फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं।
0: जी
1: और तो बताइए, आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके, वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं।
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो, घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया? जीनत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, आपके भाई हो, दोस्त हो, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ, जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं छोड़ने, मेरे को कहीं
1: हाँ,
0: जाना पड़ता है अर्जेंट तो।
1: अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं।
0: जी
1: जी चलिए, आगे बढ़ने के लिए।
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।
0: जी शुक्रिया मैम,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार दीदी,
1: जी, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी, आपसे जानना चाहते हैं
0: जी
1: कि जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो,
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए।
0: ऐसा वाक्य अब तो नहीं आया मैडम जी। बाकी ये रहता है कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती। यदि कोई आती है

0: मतलब है उसका निराकरण करते हैं।
1: हाँ,
0: कभी कोई नहीं आ पाती समस्या वैसे उनके उसमें रह
1: हाँ।
0: मदद करते रहते हैं
1: माता पिता।
0: और कभी ऐसी मौका आया तो दोस्त भाई, अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ, तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए, मदद के लिए।
0: जी मैडम,
1: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी
1: जी लखीरा साहब, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: चलिए, आपसे भागचंद साहू जी हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम,
0: हाँ
1: हाँ उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल,
0: कि
1: उनमें अगर थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नीम है सोता कमलेश कार बात कर रहा हूँ, जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाकया बताइए। आ रही है
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी,
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी,
1: हाँ हाँ,
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी,
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता

0: ये फरिश्ते हमारी जिंदगी में कई बार कई रूप में सामने आते हैं। जरूरत है ऐसे एहसास को समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए, जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए। जीवन में फरिश्ते ये मुख प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक

0: रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है, किशोर कुमार की आवाज है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा के साथ ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर मर्यादा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचौलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, जीएम दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अजीज कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्बू ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

0: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है।
1: अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुनिए, आप डरे नहीं, अब मैं आपका रक्षक हूं।
2: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, अब मुझे थोड़ी राहत मिली।
0: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
2: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
0: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
3: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त वैद्य को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
4: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित न हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता, जैसे सौमिलक धन खो देता था।
3: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्र?
4: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
5: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
6: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
5: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही, मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
6: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ भी हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है

0: यहीं पर कोई उद्योग।
1: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
2: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर दो विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश देय होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंभ दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं कटरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा? मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मान कर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
2: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
0: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
2: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
0: कैसे?
2: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
3: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
4: प्रिय, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
3: तुम उद्यमी नहीं हो, थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।
2: अगले दिन उठकर सोमिलक ने देखा गुप्त धन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्त धन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सोमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सोमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा?
3: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
2: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभुक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सोमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है।
0: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
2: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंत्रक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक।

0: मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
1: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब चुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
2: हाँ मित्र लघुवत तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
1: हाँ।
2: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
1: हाँ चलो।
2: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
3: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
1: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
3: अच्छा,
1: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
4: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
0: मित्रों क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
1: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
2: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

लघुपतनक चित्रांग की खोज में चल दिया। कुछ दूरी पर उसने चित्रांग को बहेलिए के कूटपाश में बंधा हुआ देखा।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्य को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहें।
1: अच्छा।
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवरण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव

भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याद मंथरक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंथरक के पाश को काट दिया। मंथरक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता

बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश

में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

धूप खिली हो या बरसात, चाय देती मन को सौगात। थक जाए जब जीवन की राह, चाय बन जाए मीठी चाह। चाय की खुशबू में यादें बस जाती हैं, हर घूंट में कुछ कहानियां मुस्कुराती हैं। एक कप चाय, कुछ पुरानी बातें, यही तो है जिंदगी की सच्ची सौगातें। इसी कविता के साथ महिला सभा कार्यक्रम में सुनीता सेन का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, चाय केवल पेय नहीं बल्कि जीवन का एक एहसास और सुकून का दूसरा नाम है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, अकेलेपन का साथी है चाय। हर जगह चाय अपनी खुशबू और मिठास के साथ मौजूद रहती है। चाय की भाप में अपनापन, स्वाद में प्रेम और हर चुस्की में ताजगी छुपी होती है। दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। सुबह की गर्म चाय शरीर को ताजगी देती है, मन को शांति देती है। चाय एक भावना की तरह है। घर में मेहमान आए तो उनका स्वागत चाय से ही करते हैं। गाय की चौपाल हो, शहर का ऑफिस हो या कॉलेज की कैंटीन हो, हर जगह चाय लोगों को बातचीत करने का मौका देती है। चाय हर अवसर पर लोगों की पसंद बन जाती है, अपनत्व का प्रतीक है। चाय के महत्व को देखते हुए हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन का उद्देश्य है चाय के महत्व को बताना, चाय उत्पादकों की समस्याओं को समझाना और चाय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चाय की लोकप्रियता और अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने आधिकारिक रूप से चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 19 दिसंबर 2019 में ये प्रस्ताव पारित किया गया और हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाने लगा। मई का महीना इसलिए रखा गया कि मई में चाय की पत्तियों का उत्पादन और कटाई का समय होता है। इस समय चाय की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि चाय उत्पादक देशों में लाखों परिवार में चाय आजीविका का साधन है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना है। चाय बागानों में काम करने वाले में महिलाओं की संख्या अधिक है, उन्हें भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ऐसा कहा जाता है कि चीनी सम्राट अपने बगीचे में बैठे थे। वे हमेशा सुबह पानी उबालकर पीते थे। एक दिन पानी उबल रहा था तो चाय की कुछ पत्तियां उड़कर उबलते पानी में गिर गईं। पानी का रंग बदल गया, उससे अच्छी खुशबू आने लगी। जब सम्राट ने पिया तो उन्हें अच्छा लगा और ताजगी महसूस हुई। इस तरह दुनिया में चाय का आविष्कार हो गया। चाय कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लैक टी जिसमें पत्तियों को पूरी तरह ऑक्सीकृत किया जाता है, ये सेहत के लिए लाभदायक होती है। ग्रीन टी, इसमें पत्तियों को ऑक्सीकृत नहीं किया जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये वजन नियंत्रित रखती है और शरीर की मेटाबॉलिक स्थिति को भी सुधारती हैं। और व्हाइट टी, ये सबसे कोमल और नई कलियों से बनती है, ये त्वचा के लिए लाभदायक होती है, बढ़ती उम्र को भी रोकती है। हर्बल टी, इसमें तुलसी, अदरक, पुदीना और फूलों का अर्क होता है।

सर्दी, खांसी और पाचन तंत्र को ठीक करती है। बहनों, वास्तव में चाय में जब इलायची की खुशबू और अदरक का तीखापन भाप के साथ उड़ जाता है और दूध संग मिलकर जब शावली सी हो जाती है तो हर थके हुए दिल की धड़कन बन जाती है। ऐसी होती है चाय। बहनों, चाय दिवस केवल चाय पीने का उत्सव नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों और मजदूरों को सम्मान दिलाने का दिन है जो कठिन मेहनत करके हमें चाय उपलब्ध कराते हैं। बहनों, चाय लोगों को आपस में जोड़ती है, रिश्तों में मिठास लाती है। इसलिए चाय उद्योग में काम करने वाले लोगों की समस्या को समझें, उनके हितों में प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमें संदेश देता है कि चाय के महत्व को समझें और चाय के बारे में लोगों को जागरूक करें। सुबह की धूप जब पत्तों पर लहराए, महक उठती है दुनिया, बनती है जब चाय। ये केवल पानी और पत्ती का मेल नहीं है, इस जिंदगी को जोड़ने का खेल है, रिश्तों को पास बुलाती है। एक चाय की प्याली दिल को दिल से मिलाती है।

0: बहनों, अभी आपने सौतन फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार की। शब्दों की रचना थी श्रावण कुमार, प्रदीप कौशिक की। संगीत से सवारा था उषा खन्ना ने। बहनों, अब मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: बहनों, पढ़ी लिखी महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि वे पूरे समाज की रीढ़ होती हैं। शिक्षित महिला परिवार का, समाज का और देश के विकास में सहयोग देती है। तो बहनों, आइए सुनते हैं ऐसी ही वार्ता। वार्ता का शीर्षक है पढ़ी लिखी महिला और समृद्ध परिवार। वार्ताकार हैं पिंकी झा।
3: पढ़ी लिखी महिला, समृद्ध परिवार। जब महिलाएं पढ़ाई करती हैं, तो उन्हें अधिक जानकारी और समझ मिलती है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में बेहतर से योजना बना सकती हैं। महिला शिक्षा से समाज में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में भी कदम बढ़ाता है, जिससे सभी को बराबरी मिलती है। यह समाज को समृद्धि और समानता की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। महिलाएं अपनी शिक्षा के जरिए नए क्षेत्रों में योजना बना सकती हैं। बहुत से लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम समझते हैं, जबकि उन्हें इसे ज्ञान वर्धन के रूप में भी लेना चाहिए। जब नौकरी नहीं मिलती, तब शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान ही आय का साधन होती है। इस कारण शिक्षा द्वारा अर्जित ज्ञान कभी जाया नहीं होता, यह सदियों ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए यदि महिला शिक्षित हो, तो वह न केवल अपने परिवार को लाभ पहुंचाएंगी, बल्कि समाजोत्थान में भी लाभप्रद होंगी। आजकल संचार माध्यम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसी के साथ सोशल मीडिया में भी उत्थान है। इससे अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं। इसका लाभ हर शिक्षित व्यक्ति उठाता है। इससे शिक्षा महिला भी

खूब लाभ उठा रही होती है। इसलिए यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जो काम परिवार व समाज में शिक्षित महिलाएं कर सकती हैं, वहां अशिक्षित महिला क्या कर पाएंगी। एक जमाना था जब उपरोक्त दोनों ही प्रकार की शिक्षा पर सिर्फ कुलीन घरानों का ही अधिकार हुआ करता था। वह शिक्षा आम आदमी के बस की बात नहीं थी और उस जमाने में जैसे आज हम छोटे बड़े स्कूल और विद्यालय अपने चारों तरफ देखते हैं, ऐसे नहीं थे। यह शिक्षा पद्धति तो 350 साल पुरानी है, जहां हर आम और खास को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा तो स्कूल और विद्यालय में अध्यापक की मदद से विद्यार्थी को दी जाती है, जहां अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। इस विद्या के कारण व्यक्ति के दिमाग का विस्तार होता है, उसकी सोच की संकीर्णता खत्म हो जाती है। जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, व्यक्ति के मानसिक क्षितिज का भी विस्तार होता है। इसके फलस्वरूप यह अपने निहित स्वार्थी के ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, किस आदमी से कैसे बात करनी है, अपने परिचित के साथ कहाँ तक अपनापन दिखाना है, बातचीत करते समय अपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, अपने से छोटों को कैसे प्यार जताना है, कौन पास है कौन दूर है, किस अवसर पर कैसे कपड़े पहनने हैं, ये और इस प्रकार के सैकड़ों बातें हैं जो कि बढ़ता हुआ बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। उसके माता पिता बड़ी मेहनत लगन और निष्ठा से सिखाते हैं, परंतु आज भी बात वही है जहां कल थी। ऊंचे और कुलीन घरानों की महिलाओं को बाहर जाने में प्रतिबंध लगाया जाता है। नारी शिक्षा का महत्व इस कारण से है, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप यदि वह सही प्रकार से शिक्षित महिला औपचारिक शिक्षा में, तो आने वाले समय में जब वह अपना माँ होने का उत्तरदायित्व निभा रही होगी, तो अपनी नर्सरी में ऐसे नागरिक तैयार करेगी जिन पर देश को नाज होगा। स्त्री शिक्षा समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश बिना स्त्रियों को शिक्षित किए अपनी प्रगति नहीं कर सकता। मेरा मानना है देश की तरक्की नहीं की जा सकती जब तक किसी देश की महिला शिक्षित नहीं होगी, वहाँ की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा की तरफ और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और समाज को बेहतर कदम उठाने चाहिए। एक देश भी सफल हो सकता है जब वहाँ की महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। महिलाओं की आबादी किसी भी देश में पुरुषों की आबादी के मुकाबले आधी होती है। आधी आबादी जब तक शिक्षित नहीं होगी, किसी भी देश की तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं और यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। और यह कथन मलाला यूसुफजई का है, जो पाकिस्तान की एक महिला शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्होंने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जो अब तक की सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता थी। यह कथन महिला शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए अद्भुत किया जाता है। यूसुफजई का मानना है कि जब महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, तो वे अपने परिवारों और समुदायों में बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षित करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की अधिक संभावना रखती हैं। यह कथन विवादास्पद भी रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह लिंग रूढ़ियों को बनाए रखता है और पुरुष शिक्षा के महत्व को कम करता है। एक लड़की को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है। शिक्षा की वह शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा आप दुनिया बदल सकते हैं। एक महिला जिसे शिक्षित किया जाता है, वह एक राष्ट्र शिक्षित करती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।

0: महिला शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। जीवन की गाड़ी के दो पहिया नर और नारी में से एक नारी अगर शिक्षित ना हो तो जीवन सही ढंग से ना गुजर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी गाड़ी का एक पहिया सही और दूसरा खराब हो तो एक गाड़ी चल पाएगी, ऐसे ही इस जीवन की गाड़ी शिक्षा नारी के लिए आवश्यक है। 19वीं सदी में शायद कोई दूसरी शख्सियत होगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वंचित समाज की शिक्षा और उत्थान के लिए लगाया हो। जात पात अछूत प्रथा ब्राह्मणवाद अंधविश्वास महिलाओं की दुर्दशा किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ आधुनिक भारत में सावित्रीबाई फूले ने प्रखर तरीके से आवाज उठाई। सावित्रीबाई की इस लड़ाई में उनके जीवन साथी महात्मा ज्योतिराव 1827-1890 बराबरी के शरीक थे जिनसे उनकी 9 साल उम्र में शादी हो गई थी। शिक्षा शिक्षा होता है, ज्ञान अज्ञानता एक दूसरे के पूरक हैं। एक मैं टास्क देता हूँ, एक गुरुजी बोले शिक्षा दिए के जो डूबने से बच जाए उसको बचा लेने में ही समझदारी है। शिक्षा दे दिए, सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण किए अपने अनुसार। एक छात्र ने शिक्षा को ठीक गुरुजी के बताए आज की नारी घर की दीवारों में रहना पसंद नहीं करती, बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। सही ही है, आज नारी में अपनी मेहनत और लगन से सबको पीछे छोड़ दिया है।
1: बहनों, अभी हमारी बहनें सुन रही थी पढ़ी लिखी महिला और समृद्ध परिवार वार्ता। वार्ताकार थी पिंकी झा। बहनों, देश की मिट्टी पुकारती छोड़ो हिंसा की राह, मिलकर हम सब लाएंगे शांति की एक नई सुबह। बहनों, आतंकवाद वह हिंसात्मक गतिविधि है जिसमें लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं, जैसे बम विस्फोट, गोलाबारी, अपहरण, आत्मघाती हमले। तो आतंकवाद संगठन समाज में डर पैदा करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, इसमें निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग चपेट में आ जाते हैं जिनका कोई कुशूर नहीं होता है। समाज में भय, असुरक्षा और तनाव का वातावरण बन जाता है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए देश में भाईचारा, शांति और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का ऐतिहासिक कारण है कि 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी तमिलनाडु में एक आतंकवादी हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश के आतंकवाद से उखाड़ने के लिए और युवाओं को हिंसा के रास्ते पर जाने से रोकने के उद्देश्य 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी की पुण्यतिथि में घोषित किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को समझाना है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाज में शांति, सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। आतंकवाद केवल मासूमों की जान ही नहीं लेता बल्कि किसी भी देश की प्रगति को पीछे धकेल देता है। इसके अलावा देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। समाज में डर, अविश्वास और असुरक्षा का माहौल रहता है जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होता है। बहनों, भारत लंबे समय से आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है जिसमें निर्दोषों की जान गई है, जैसे संसद हमला, मुंबई हमला, पुलवामा हमला जैसे आतंकी हमलों ने देश को झकझोर दिया है। इन घटनाओं ने हमारे देश के सैनिकों में भी प्राणों की आहुति दी है। बहनों, आतंकवाद के कई कारण होते हैं, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ, अशिक्षा और बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानता, गलत विचारधारा का प्रभाव, विदेशी शक्ति का समर्थन। बहनों, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार के कारण भी हिंसा होती है।

0: दिनों जब युवा सही शिक्षा और अवसरों से वंचित रह जाते हैं तो लोग उन्हें भड़काकर हिंसा के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए समाज में शिक्षा, रोजगार और जागरूकता को बढ़ाना है। आतंकवाद को रोकने के लिए केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हमारे सभी भाई बहनों का कर्तव्य है कि उन्हें आगे आना होगा, देश को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति समाज में हिंसा को दूर करता है। युवाओं को रोजगार, खेल, कला, सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ें ताकि वे गलत रास्ते पर ना जाएं। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में भाईचारा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर फैलाने वाले अफवाहों और भड़काऊ संदेशों से सावधान रहना चाहिए। गलत जानकारी को आगे नहीं बढ़ाएं, ना ही भड़काएं, ना ही संदेशों को फैलाएं। अब मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत अनोखा रिश्ता फिल्म का। ये आवाज है आशा भोसले साथियों की, संगीतकार हैं आर डी बर्मन, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

बहनों, गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल के कारण बालों को नुकसान पहुंचता है। गर्म हवाएं, सूरज की तेज किरणों की वजह से बालों में रूखापन आ जाता है, तो बाल झड़ने लगते हैं, बालों की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है और थोड़ी सी सावधानी अपनाएं तो बालों का चमकदार और मजबूत बनी रहेंगे, बालों का झड़ना नहीं रहता है, बाल नहीं झड़ते हैं। गर्मी के मौसम में सिर में पसीना आने की वजह से गंदगी और तेल जमा हो जाती है, जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं और डैंड्रफ हो जाती है। इसलिए गर्मियों में 2 या 3 बार बाल साफ करना अच्छा माना जाता है। हर्बल शैम्पू का उपयोग करें, केमिकल वाले शैम्पू का उपयोग ना करें, ठंडे पानी से बाल धोएं। गर्मी के मौसम में बालों में पोषण की आवश्यकता होती है। नारियल तेल, बादाम तेल, आंवला तेल वाले बालों के लिए लाभदायक होता है। अब बहनों, बालों की अपनी देखभाल करें। इसी के साथ ही महिला सभा कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की, और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का यह भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था और कलाकार थी मोनल सावरकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में आरटीई के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल आरटीई के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य

0: पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched.
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले

0: AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कविता कृष्ण।

और भीगी पल के फिल्म का ये गीत आपने सुना था किशोर कुमार का गाया हुआ। एमजी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलकराज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त, रामचंद माखीजा का, फिर शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार बनियापारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, मानिकपुरी लेवई से रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से, अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाजें दी थी, गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासु, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल से इसी गीत को सुनना चाहा था, प्रमिला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, मालवा रेडियो श्रोता संघ से ये चिट्ठी लिख भेजी है, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटाघर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में है झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला

जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की। इन्होंने हमें झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ।

इस गीत में आप सुन रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के बोलों को, रवि के संगीत निर्देशन में महेंद्र कपूर और लता जी का गाया हुआ यह गीत है। फिल्म का नाम है भरोसा।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे।

ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8 बजे। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी रात 10 बजे। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप शाम 5 बजे से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस क्यों चुना? दरअसल चाय का उत्पादन करने वाले देशों में मई का महीना सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्तियों की तुड़ाई का समय होता है
1: और इसी साल यानी 2026 की थीम बहुत खास है, सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। इसका मतलब है कि जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो हमें उन लाखों चाय बागान मजदूरों और छोटे किसानों को नहीं भूलना चाहिए जो धूप और बारिश में मेहनत करके हमारे कप तक या स्वाद पहुंचाते हैं। अगली बार जब आप चाय पिए तो उनके योगदान को सलाम जरूर करें।
0: दोस्तों, हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर पर चाय का स्वाद बदल जाता है। कहीं असम की कड़क कड़क चाय तो कहीं दार्जिलिंग की खुशबूदार ब्लैक टी, तो कहीं कश्मीर की कहवा तो कहीं गुजरात की मसाला चाय। हर का अपना एक अलग अंदाज है और अपना एक अलग ही स्वाद है।
1: तो इस चाय दिवस पर हम आपको चाय के कुछ अनोखे फन फैक्ट्स बताते हैं।
0: जी हाँ, पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला लिक्विड अगर कोई है तो वो चाय ही है।
1: हम आपको बता दें कि चीन के राजा शेंग चुन के सामने गर्म पानी का कटोरा रखा था। हवा से कुछ जंगली चाय की पत्तियां उसमें गिर गईं। पानी का रंग बदला, राजा ने पिया और बस दुनिया को चाय मिल गई।
0: आजकल चाय पत्ती का उपयोग सिर्फ पीने में नहीं बल्कि टी लीफ, केक, ब्राउनी और छोले भटूरों के छोलों में बढ़िया रंग लाने के लिए भी किया जा रहा है।
1: तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर खुद भी चाय पीजिए और दोस्तों को भी पिलाइए।
0: चलते चलते किसी शायर की एक खूबसूरत लाइन है आपके नाम कि अजीब शख्सियत है चाय की भी, अजीब शख्सियत है चाय की भी, जितनी उबलती है उतनी कड़क होती जाती है। तो अभी हमने चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर, रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, तो आइए इस पर हम आपको जानकारी देते हैं।
0: राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि की स्मृति में और समाज में शांति, मानवता और एकता का संदेश देने के लिए समर्पित है।
1: कैलेंडर की ये तारीख हमें एक ऐसे घाव की याद दिलाती है जो देश के दिल पर लगा था। आज ही के दिन साल 1991 में हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को एक आत्मघाती आतंकी हमले में खो दिया था।
0: इसी दुखद घटना के बाद से हर साल 21 मई को पूरा देश राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन किसी उत्सव का नहीं बल्कि एक संकल्प का है, एक ऐसी शपथ का है जो हमें इस देश के नागरिक होने के नाते लेनी चाहिए।
1: आतंकवाद यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक ऐसा क्रूर चेहरा है जो मासूमों की जान लेता है, हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देता है और प्रगति की राह में रोड़ा अटकाता है। चाहे सीमा पर डटे हमारे वीर जवान हो या फिर शहर की भीड़ में अपनी ड्यूटी करते पुलिसकर्मी, इस देश ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने कई जवान बेटों को खोया है।
0: दोस्तों, आज का यह दिन उन सभी शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज गृह मंत्रालय और देश के सभी सरकारी दफ्तरों में एक विशेष शपथ ली जाती है, अहिंसा की, शांति की और हर तरह के आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने की।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि आतंकवाद से लड़ना सिर्फ सरकार या फौज का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सजग नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
0: जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या किसी बाजार में कोई लावारिस वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
1: अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे कोई नफरत फैलाने वाला मैसेज फॉरवर्ड करें।
0: समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखें क्योंकि एकता ही आतंकवाद का सबसे बड़ा जवाब है।
1: आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी बड़े हादसे को टाल सकती है।
0: तो हमने जाना राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में, रुक लेते हैं एक और अंतराल के लिए।

0: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ खुशी करवरिया
1: और मैं सौम्या शर्मा। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी चाय प्रेमियों को चाय दिवस की कड़क शुभकामनाएं।
1: दोस्तों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, ये एक इमोशन है, एक भावना है। सुबह की नींद भगाने से लेकर दफ्तर की गॉसिप, दोस्तों की महफिल और बारिश के मौसम में पकौड़ों के साथ जुगलबंदी, चाय के बिना सब अधूरा है। तो उठाइए अपना कप, लीजिए एक कड़क चुस्की और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज चर्चा होगी हमारी इसी राष्ट्रीय ड्रिंक पर।
0: वैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने 21 मई

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो साथियों, हम जानते हैं कि आपको हर गुरुवार आपके पसंदीदा कार्यक्रम का इंतजार रहता है, तो आइए सुनवाते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स,
0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता बात कर रहा हूं मैडम।
3: जी कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। और बताइए कैसे हैं आप?
2: जी मैं तो बहुत अच्छा हूं मैडम जी, आप लोगों का कार्यक्रम सुन के और अच्छा हो जाता हूं मैडम जी।
3: और बताइए कैसा गर्मी कैसी पड़ रही है?
2: बहुत बहुत बढ़िया गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है महोबा में मैडम जी।
3: जी
2: जो है आपके प्रोग्राम का सहारा रहते हैं, अंदर 1 बजे से अंदर जो है अंदर हो जाते हैं, अपनी दुकान है, दुकान को बढ़ा के अपना सीधे अंदर बढ़िया प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: कृष्ण कुमार जी बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगे? आपकी आज की फरमाइश क्या है?
2: ये मुझे जो है लोफर फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, आज मौसम है बड़ा बेईमान है बड़ा ये वाला।
0: जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार
2: जी मैडम।

0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो मैम, मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आज से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम। मैम अभी तो मैं पहली बार ही हेलो फरमाई से छतरपुर से जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी तो आज विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस है, तो उसी का उपलक्ष्य में मैं एक गाना आकाशवाणी से सुनना चाहूंगा मैम।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आहे ना भर ठंडी ठंडी गरम गरम चाय पी ले, तो ये गाना डेडिकेट मैम आपको भी रहेगा। हमारे विजेंद्र विश्वकर्मा भाई हैं जो टीकमपुर से हैं, पाल यादव जी हैं जो बुंदेलखंड से हैं।
0: जी आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चंद्रभान नामदेव बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट देरी, जिला छतरपुर से।
2: जी चंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो छतरपुर जिले से ही हैं, देरी गांव से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ, देरी गांव से बोल रहे हैं मैडम
2: जी। और क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई का काम करते हैं मैडम जी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके साथ साथ काम करना कितना मुश्किल हो पा रहा है आप लोगों के लिए?
1: हाँ, गर्मी तो बहुत तेज है, क्या किया जाए, लू भी बहुत तेज चलती है, धूप बहुत तेज चल रही है।
0: और बताइए आप क्या करते हैं?
1: सिलाई करते हैं और रेडियो सुना ही टेस्टा रेडियो सुना रही है, उबाणी ग्राम सभा लोकधारा कार्यक्रम सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं। और आपकी आज की फरमाइश क्या है?

0: आज फरमाई गए हमारी कुर्बानी कलम का एक सॉन्ग है, मैं जब जब तुझे पुकारे मैं छोड़ आया नदिया किनारे।
1: हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: हाँ थैंक यू
1: जी, नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी तरह से, आपकी दुआई फिर कृपा से हवाएं चल रही
0: है। जी जी क्या कार्य करते हैं आप?
1: खेती किसानी करता हूँ। फिर सुना दिए गिरफ्तार फिल्म अगर मिल जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: चलिए सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये फरमाइशी गीत।
1: नमस्कार।
0: हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला ग्राम रतवास पोस्ट मवई जिला टीकमगढ़ से बात कर रहा हूँ।
0: जी वीरेंद्र जी बताइए कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है बहन।
0: क्या करते हैं आप वीरेंद्र जी?
2: बहन मैं खेती करता हूँ।
0: अच्छा खेती करते हैं आप, तो कैसा मतलब इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, सबके लिए मना किया गया है कि कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप लोग को काम करना पड़ता है, तो किस प्रकार से कर पाते हैं फिर?
2: खेत पे जाना पड़ता है, मवेशी हैं भैंसे हैं उनको देख रेख करना पड़ती है।
0: जी जी जी जी अपना इस गर्मी में ख्याल रखिए।

0: कीजिएगा आप और बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी आज की।
1: आज गेस्ट आए फिल्म का गाना है धूप में नन के लगता करूँ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है,
2: बिल्कुल सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से आपका जाना पहचाना श्रोता इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है। ये हमारी समोदिया चौराहे पर चावलों का कारोबार है, चोकर और चावल बेचते हैं और आपके प्रोग्राम सुनते हैं। आपके प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहे हैं मैम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और इस तरीके का जो फीडबैक देते हैं वो हमारे लिए भी बहुत खास होता है, तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: गर्मी बहुत है मैम, गर्मी बहुत पड़ रही है। सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी इस्तेमाल करें और ज्यादा बर्फ का पानी इस्तेमाल नहीं करें, नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें और दोपहर के टाइम अपने घर में आराम करें और शाम के टाइम ही निकलें।
2: जी जी,
1: के अनुसार।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी अपना ख्याल रखें इस गर्मी के मौसम में।
1: जी मैम।
0: बताइए इलियाजी, आपकी आज की फरमाइश क्या है, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: राजा हिंदुस्तानी का सुनवा देना।
0: जी।
1: तेरे इश्क में नाचने वो क्या रात आई है।
0: जी बिल्कुल, सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: दीदी, मैं श्रीराम रेडियो सोता सिंह बमोरी कलांजला टीगौर से पाठक बात कर रहा हूं। दीदी
0: जी, पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: गाना सुनना है
0: जी। कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सत्यम शिवम सिमरन को सुनवा दीजिए, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूं।
0: बहुत बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी,
1: क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है शंकर जी का।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा
1: है, सुनना है
0: तो हम आपकी फरमाइश का एक गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: जी दीदी
0: जी, नमस्कार।

0: चक्रपुर
1: जी। हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं महाराष्ट्र ग्राम करार जिला सातारा से सुखाराम जादव बोल रहा हूँ।
1: सुखाराम जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: आप कैसे बैठ जी?
1: बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए।
2: और आपका चक्रपुर परिवार?
1: हमारा आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछने के लिए।
2: पूछना ही चाहिए, आप पूछते हैं तो हम भी पूछते हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छा लगा हमें
2: बातचीत करके, बहुत अच्छा लगता है।
3: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा। और निश्चित रूप से आप जैसे जो श्रोता है हमारे, उन्हीं की वजह से हम भी अच्छा फील कर पाते हैं। सब जुड़ाव एक महसूस होता है साथ में। और बताइए, क्या फरमाइश है आपकी आज, क्या सुनना चाहेंगे आप? जी
2: जी, चंद्र का
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करो।
3: बहुत बहुत बढ़िया, नमस्कार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: जी हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: हम मंजू नामदेव बात कर रहे हैं, डेरी गांव से।
0: कैसी हैं आप और क्या कार्य करती हैं? गृहिणी हैं या कुछ कार्य भी करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ, आसपास के में काम भी करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और बताइए आज की क्या फरमाइश है, आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: हमको बेताब फिल्म का गाना सुनवा देना, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। हम आपकी पसंद का आपको एक गीत सुनवाते हैं।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हेलो फ्रेंड्स से।
0: जी हेलो फ्रेंड्स से ही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी हम ग्राम व पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: जी मेहरबान जी, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया हैं।
0: अच्छा, क्या कार्य करते हैं?

0: बस दीदी खेती बाड़ी इससे जुड़े
1: जी जी जी बहुत सुंदर
0: काम करते हैं और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं आकाशवाणी छतरपुर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। क्या फरमाइश क्या है आज की आपकी?
0: फिल्म का नाम है दीदी कर्मा और गीत के वो है ना जइयो परदेश।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
0: जी दीदी धन्यवाद, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी अच्छा हूँ और मस्त हूँ। इस समय दोपहर में आराम कर रहा था तो हमने सोचा हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग है। आज बातचीत काफी दिन से नहीं हुई थी तो आज फोन भी लग गया और आपसे हमारी बातचीत भी हो रही है।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बिल्कुल दीदी जी, हेलो फरमाइश और ये हेलो फ्रेंड्स और फिल्म संगीत और ये रंदुल्ला कार्यक्रम, जितने भी फरमाइशी कार्यक्रम आते हैं दीदी, मुझे बेहद ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी, वैसे तो फिलहाल मैं पहले मुंबई में रहता था लेकिन स्वास्थ्य

0: मेरा खराब होने के कारण फिर मैं वहाँ पर नहीं जा सका, तो लेकिन अभी माता पिता के साथ में यहाँ खेती किसानी का फिलहाल काम करवा रहा हूँ।
1: जी जी, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे और हमें आपकी फरमाइश जाननी है, आप क्या कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम रहेगा जुड़वा और गीत की बोल रहेगा दुनिया में आए हो तो लव कर लूं।
1: जी जी बिल्कुल, आपकी पसंद का हम ये गीत सुनवाएंगे आपको। नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स,
1: तो अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। और इसी के साथ अब हम दे देते हैं आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम की रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा यानी कि सीडीएस 2026 की भर्ती हेतु परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है।
2: पद का नाम है IMA, वायुसेना अकादमी, नौसेना अकादमी, OTA।
1: पदों की संख्या 451 है।
2: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। पोस्ट के हिसाब से योग्यताएं भी अलग अलग रखी गई हैं।
2: पद संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर।
1: तो ये तो थी रोजगार सूचना। अब हम आपको जाते जाते कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी दे देते हैं। कल के कार्यक्रम

0: कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ नीलम प्यासी जी की आवाज में।
1: साथ ही आप सुनेंगे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं और रोजगार सूचना।
0: तो अब घड़ी ने इशारा कर दिया है और समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त खुशी करवरिया को
1: और सौम्या शर्मा को। नमस्कार।

मिडे में 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। अब से बस कुछ देर बाद शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार हैं जितेंद्र कुमार यादव। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा सुनेंगे कमलेश प्रसाद राजपाली का काव्य पाठ। रात्रि 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे सुनेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के सफर पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। रात्रि 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आप सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल सुबह 6:35 पर सुनिए खेती किसानी में जानकारी। विषय होगा नाडेप खाद प्रयोग के लाभ। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। गायक सर होगा कविता कृष्ण मूर्ति का। सुबह 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। सुबह 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए अवनींद्र खरे का काव्य पाठ। फिल्म संगीत में फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। राग होगा ललित। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे नन्हे भाई लोधी। सुबह 9:30 पर सुनिए फिल्मी कव्वालियां। सुबह 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर सुनिए गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। सुबह 10:20 पर सुनेंगे गैर फिल्मी भजन। सुबह 10:30 पर सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होंगे कार्यक्रम। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में सुनिए शशि प्रभा मिश्रा का काव्य पाठ। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। कलाकार होंगे अटल शुक्ला। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की। दिन में 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। शाम 5:02 पर युवा साथी युववाणी कार्यक्रम में सुनेंगे नीलम प्यासी का काव्य पाठ और रोजगार सूचना। शाम 6 बजे सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित

होने वाले कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से शाम 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकधारा में कलाकार होंगे घनश्याम सिंह यादव। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा पृथ्वी और देवतादी की करुण पुकार। प्रवचन करता होंगे राजकुमार उदयनिया। इसके अलावा किरण शर्मा की वार्ता वर्तमान समय में कृषि अर्थशास्त्र और किसानों की आय। रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: थी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगी।
1: प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरी संयंत्र मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरी संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। अब तक 10,19,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 4,38,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना के तहत 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की गई थी, जो कि 15 मई तक लागू थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
4: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
3: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
4: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
3: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
4: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
3: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
4: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
3: जी,
4: अगला संदेश हमें मिला है
3: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
4: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
3: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
4: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
4: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली।

0: पहली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की
1: जी।
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट
1: जी।
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत
0: जी।
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है
1: जी। हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है
0: जी। शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नीलकुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया, वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लू। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो ध्यान लगा कर सुनो सुनो कान लगा कर सुनो सुनो ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने

0: मुन्ना खरगोश, क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादीमा दादीमा, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर

0: खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ,
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ।
8: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़,
6: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू,
9: इसे काटो। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
6: चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
10: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
9: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
6: अच्छा ठीक है
7: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।

0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
3: अरे अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
4: पेड़ हमारे
5: दोस्त हैं।
4: जीवन में हरियाली लाओ,
5: पेड़ लगाओ,
6: पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जितेंद्र कुमार यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आपने सुना कृष्ण भजन, आवाज थी जितेंद्र कुमार यादव की। और लीजिए अब सुनिए लोक शैलीबद्ध गीत गर्मी के ऊपर।

ये लोक शैलीबद्ध गीत आप सुन रहे थे। इसमें आवाज थी जितेंद्र कुमार यादव की। ढोलक पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार खरे। बैंजो पर थे अरुण कुमार खरे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
5: लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी की महिमा पर आधारित ये अगला लोकगीत। कलाकार हैं जितेंद्र कुमार यादव, ढोलक पर संगत कर रहे हैं सुरेश कुमार खरे, बैंजो पर हैं अरुण कुमार खरे।

0: AIR at 90.
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विदाई गीत अभी आपने सुना, आवाज थी जितेंद्र कुमार यादव की। ढोलक पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार खरे, वेंजो पर थे अरुण कुमार खरे।

बुंदेलखंड महिमा पर अभी आपने ये लोकगीत सुना। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त हुआ। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार थे जितेंद्र कुमार यादव, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार खरे और बेंचों पर थे अरुण कुमार खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें गुमशुदा सूचनाएं। पहली सूचना है नाम सीमा, पति का नाम चरण सिंह, पिता का नाम शंकरलाल, निवासी ग्राम तिरावली थाना कुठौंद, हुलिया रंग सांवला, लंबा चेहरा, नाक का नाक औसत, लंबाई करीब 5 फीट, पहनावा काई कलर की साड़ी और फाइबर की चप्पल। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है इन नंबर्स पर संपर्क करें। पहला नंबर है 9454401428। एक और नंबर नोट करें 9454403600। अगली सूचना है नाम लाखन सिंह जाटव, पुत्र स्वर्गीय टीकाराम, पता ग्राम मगराया पोस्ट कोकरगांव उरई तहसील

इलाजा लोन, रंग गोरा, लंबा चेहरा, बाल लंबे, उम्र 20 वर्ष, लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच, आंख कान नाक, चेहरा गोल। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है इन नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर है 9792943581। अगला नंबर है 9454403599। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब $40 अरब के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
5: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
4: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली।

0: डॉ यादव ने कृषि मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1164 मार्गों पर 5206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
2: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं बावड़ी नहर तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
0: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई है जिनकी कीमत 120 करोड़ रूपये बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती है और ये बीज कम पानी कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी

झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वनवृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियावेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंच भैया भाई एक बार फिर से अपने नोने भैया की राम राम पहुंचे। और पंचो, चाय भरी दोपहरिया हो, चाय भंसारे को सबेर हो, चाय पे यदि चर्चा ना हो और घर के आंगन की बकरी में सभी जने बैठ के संगे चाय की चुस्कियन को आनंद ना ले, ऐसो तो भैया होते ही नहीं है। कौनू भैया कप में पी रहो, कौनू हल्की सी ग्लास में पी रहो, कौनू भैया तो कौनू पूरे कुल्लड़ में भी पी रहो। भैया जो कहा थे 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, और देखो आज तारीख है 21, तो आज काका अपने 21 मई का होत है, तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी 21 मई मनाओ जाते। चाय एक खाली पीबे को पदार्थ नहीं है या कोनो सेवन क्यों ऐसो विशेष नहीं है, लेकिन कहो जाते कि मतलब पूरे विश्व में पानी के बाद में जो सबसे ज्यादा पीवे वालों पेय पदार्थ है तो वो चाय है भैया। और चाय पे बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, और अपने भारत देश में तो जो है कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग अलग प्रकार की चाय इनको स्वाद मिला था, उनकी संस्कृति से जुड़ा होते है, और हर जगह को एक अपनी चाय को जो विशेष महत्व भी बताओ जाते। आप दार्जिलिंग चले जाओ, असम चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, चाय के जो बड़े बड़े मगान हैं, केरल चले जाओ, आप जो है कर्नाटक तरफ चले जाओ, आप जो है बेंगलोर तमिलनाडु तरफ चले जाओ, तो जहां जो उन जगह पे चाय के बागान है होते है कि अपनी चाय को अपना स्वाद है, अपनी संस्कृति है और अपने अपने उनके स्वाद है, और उन स्वादन के साथ साथ जो है हम पंच भैया बहनन को अपनों एक के अंदर जो बैठ के आपस में

0: प्रेम व्यवहार बड़ा थे वो भी बड़ो महत्वपूर्ण होते। और ऐसे ही संगे संगे 21 मई का एक जो है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाओ जाते। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी 21 मई का उनको जो है आतंकवादियों ने उनका बम की धमाका करके जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यही कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई भी मनाई जाते। भैया आतंकवाद विरोधी दिवस बनावे को सबसे बड़ो जो मूल कारण है वो जो ही है कि अपन का आतंकवाद का जड़ मूल से खत्म करने हैं। कैसे आपस में जो वैमनस्यता जो है अपने बीच में है वो फैलाते हैं, द्वेष भावना फैलाते, जनहानि होते, सार्वजनिक हानि होते, संगे संगे आपसी को जो प्रेम है जो हमारी मानवता है उसको भी ह्रास होते। तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनावे को एक भैया बड़ो महत्वपूर्ण कारण जो ही है कि एक दूसरे के प्रति मानवता को अपन विकास करें, एक दूसरे का समझें परखें और एक दूसरे को सहयोग करके अपने देश का आगे बढ़ावे के लाने अपन लेके जाए। बहुत सारी चर्चाएं हैं आज के अपने कार्यक्रम में अपने पंचन के संग होती रहे, लेकिन तनक देर के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

तो देखो भाई पंच हरो जातो हती अपन को और उनके बीच की आज की चर्चा के कई समय का काकब हो तो अब आउत है अपन और आज के अपने कार्यक्रम के अंदर। तो भैया आज अपने पंचन की लाने अपन लेके आए हैं, एक काव्य पाठ है और पंचन को मन पसंद प्रोग्राम है सुनो गीत गुनो बतकाओ। आज की सीख भी है और काल के कार्यक्रम भी है। तो पंचन का एक तरफ से अपन शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का अपन आज के काव्य पाठ के संगे जो कमलेश प्रसाद राजपाली जी ने करो है। तो सुनते हैं आज को जो काव्य पाठ है।

बेटी है अपने इस कुल की मर्यादा, बेटी है अपने इस कुल की मर्यादा, शिक्षित करें इसका करो आप वादा, शिक्षित करें इसका करो आप वादा, बेटी और बेटन में भेद ना बनाओ।

पढ़ाओ बेटी खां बेटन से आगे बढ़ाओ। बेटी बताई जात तीन कुल किसान, बेटी बताई जात तीन कुल किसान, प्रियतम और पिता मामा की पहचान, प्रियतम और पिता।

माँ की पहचान। अरे तीनों कुलन के तुम नाम ना लजाओ, तीनों कुलन के तुम नाम ना लजाओ, बेटी खबेटन से आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी खबेटन से आगे बढ़ाओ, करत नाम रोशन हर कामन में बिटिया, करत नाम रोशन हर कामन में बिटिया, माता और पिता की तो शान आए बिटिया, माता और पिता की तो शान आए बिटिया, यादव रघुवीर चाहे जागा अजमाओ, यादव रघुवीर चाहे जागा अजमाओ, बेटी खबेटन से आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी खबेटन से आगे बढ़ाओ। ये हमारी दूसरी कविता। अरे दारू पीबो छोड़ दो सैया, भाउत फिरत मठा से है, उस संगे लटा पटा से है, दारू पीबो छोड़ दो सैया, भाउत फिरत मठा से है, संके लटा पटा से है, उम्र के भैया नादान, तुमने राखो नैया ज्ञान, ई में होत मान की हान, जेठन की सबरी धोडारी, जेठन की सबरी धोडारी, दोरे लगे टटा से है, भाउत फिरत मठा से है।

सबरे में पिट गो तुगा है, खेलो ऐसो आप जुगा है, घर बखरी बिक गो कुआ है। अरे सबरे में पिट गयो तुगा है, खेलो ऐसो आप जुगा है, घर बखरी बिक गयो कुआ है। अरे गोरे लगाए को पूछत नैया, गोरे लगाए को पूछत नैया, बैठे आज चटा से हैं, ओ संके लटा पटा से हैं, दारू पीबो छोड़ दो सैया, भाउत फिरत मठा से हैं, ओ संके लटा पटा से हैं। समझा लो तुम खां बहु भांति, तुमरी कितौ रही ना खाती, रोजौ करवे कालो दाती। अरे समझा लो तुम खां बहु भांति, तुमरी कितौ रही ना खाती, रोजौ करवे कालो दाती। रघुवीर नाम पढ़ो है दरुगा, रघुवीर नाम पढ़ो है दरुगा, काड़त गटा भटा से हैं, ओ संके लटा पटा से हैं, दारू पीबो छोड़ दो सैया, भाउत फिरत मठा से हैं, संके लटा पटा से हैं। और ये हमारी तीसरी कविता, अरे बिटिया दो तो धन दो मालक, प्रथा मांग बनाई रे, लड़का वाले मांग मंगा रे, भारी है महंगाई रे। बिटिया दो तो धन दो मालक, प्रथा मांग बनाई रे, लड़का वाले मांग मंगा रे, भारी है महंगाई रे। है दस बीघा खेत जमीन, घर में लड़का है वे तीन, घर में डरो न एक टीन, नैया इंजन एक मशीन। अरे ओई पे लाख मंगा रे दद्दा, ओई पे लाख मंगा रे दद्दा, लड़का ना देखत दिखाई रे, ओ लड़का बारे मांग मंगा रे, भारी

महंगाई रे बिटिया दो तो धन दो मालक प्रथा मांग बनाई रे लड़का बारे मांग मंगा रे भारी है महंगाई रे। अरे लड़का बारन के बड़े हैं भाओ के रहे हम खां तुम ही कमाओ। लड़का बारन के बड़े हैं भाओ के रहे हम खां तुम ही कमाओ। आसुन करने ना हम ब्याओ भैया घरे तुम अपने जाओ। आसुन करने ना हम ब्याओ भैया घरे तुम अपने जाओ। कईक जगा के आए दिखैया कईक जगा के आए दिखैया लड़का करत पढ़ाई रे लड़का बारे मांग मंगा रे भारी है महंगाई रे। बिटिया दो तो धन दो मालक प्रथा मांग बनाई रे लड़का बारे मांग मंगा रे भारी है महंगाई रे। बिटिया पेटे नहीं समात बिटिया परवस पर घर जात के बिटिया पेटे नहीं समात बिटिया परवस पर घर जात। रोबे मात पिता और भ्रात लग रहो हृदय में आघात। रोबे मात पिता और भ्रात लग रहो हृदय में आघात। कमले से आज मनई मन सोचे कमले से आज मनई मन सोचे बिटिया जात पराई रे लड़का बारे मांग मंगा रे भारी है महंगाई रे। बिटिया दो तो धन दो मालक फिर था मांग बनाई रे लड़का बारे मांग मंगा रे भारी है महंगाई रे। और हमारी चौथी कविता घर में बिटिया का महत्व।

लगी टुकड़ा एक हिया को, हे राम टुकड़ा एक हिया को दे।

को हरी महकत रात चमन सो जो घर महकत रात चमन सो जो घर जे सौ रहत पिया को हैरान।

कन्यादान महान जगत में, कन्यादान महान जगत में विनय।

0: पंचो देखो कितनी बढ़िया बात अपने आज कमलेश प्रसाद राजपाली जी ने अपन रखा अपनी काव्य पाठ के माध्यम से बताई कि बिटिया को महत्व है कि उखा पढ़ाऊने हैं लिखाऊने हैं और बहुत सारी चीजें उखा ई काबिल बनाऊने हैं कि बा अपने पैरन पे खड़ी हो सके। और अपन और इंतजार कर रहे थे आज के अपने कार्यक्रम को सुनो गीत गुनो बतकाओ तो जरूर शुरू कर भी लेकिन तनक देर की बात।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: तो पंचो फिर आज के अपने कार्यक्रम में सुनो गीत गुनो बतकाओ में जनोपयोगी चर्चाएं और लोकगीतों पर आधारित जो आज को कंपेयर्ड कार्यक्रम है प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की है। तो उनने आज अपनोरन से कही कि भैया पंचन की बहुत सारी पंच बहनें जो उन्हें मायके जावे के लाने बैठी हैं गर्मी को मौसम है और भैया ये गर्मी के मौसम में अपन औरन खां बचाव करत भाव अपने आप खां सुरक्षित रखेत भाव जो उन्हें अपन औरन खां कोनो भी काम करने हैं। तो जो उन पंच बहनें मायके जा रही हैं वे काय जा रही हो काय के लाने जो उन्हें पंच भैया हरे भेजवे के लाने मना कर रहे हैं सुनत हैं रामचंद्र हरवार व साथियन की लोकगीत के माध्यम से।

तो भैया हरो ऐसो हतो आज को अपनो सुनो गीत गुनो बतकाओ गर्मी की ऊपर के जोन पंच बहने अपनी मायके जा रही हैं और जिनके घरे कोनो काम करवे वालो नहीं अकेले हैं भरी तो परिया में निकल रही हैं सब भी बातें हैं तो गर्मी से बचाओ अपन औरन का करबो बहुत जरूरी है तो और आज की कार्यक्रम की जो प्रस्तुति जोन हती वा रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की थी और भैया अपन औरन का जोन गर्मियन में दूसरे जल से होवे वाली बीमारी है उसे भी अपने पंचन का बचाव करने हैं अपन और उनका चाहने के भैया ठंडो पानी पीने हैं तो पहले अपने पानी का उबाल लें छान लें उके बाद में मटका में भर लें कैसे ऐसी गर्मियन में डायरिया जैसी बीमारी जो है पीलिया जैसी बीमारी घर करती है और बासो खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं और बाहर के खाना से तो बहुत ही अपने पंच भैया दूर रहे तो ऐसी हती भैया आज की अपन और उनकी चर्चाएं आज की सीख जोन है कि भैया कही जाते हैं कि जी को जो स्वभाव है जोन न जाने जी जोन न जाए जी से जी को जो स्वभाव है जोन न जाए जी से नींद न मीठी होए खाओ गुर घी से कि भैया आदमी को जो स्वभाव है वो कभी बदलत नहीं है यदि आदमी की जोन प्रवृत्ति जो है वो लड़बे की है अपन और उनसे झगड़ा करबे की है तो आप उखा कितने को समझा लो वो कहूं ना कहूं जाके एक दूसरे से झगड़ा करे और कोनों की भैया अरे बड़ो मिलनसार व्यक्ति है तो चाहे अपन और उसे कितने को भी झगड़ा कर ले लेकिन मिल है तो वो बिल्कुल प्यार से मिल है तो जाती आज की सीख और चलवे के पहला अपने पंचन का काल के कार्यक्रम भी बताते जाए तो काल अपने पंच भैया सुने मानस प्रवचन पृथ्वी और देवादि की करुण पुकार वार्ता हुई है वर्तमान समय में कृषि अर्थशास्त्र और किसानों की आय के ऊपर तो जी हो गए अपने काल के कार्यक्रम और चलवे की अब बेरा हो रही है तो पंचन से विदा ली जाए पंचो राम राम।

0: 4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है हमारा अगला कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।
1: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
4: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से RBL बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
5: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है।

0: यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलेट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डच सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रांगर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र संस्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।

0: यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहां के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
1: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
0: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध

0: सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हसीना मान जाएगी। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, शब्द रचना थी अख्तर रोमानी की, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। अगला गीत सुनिए, फिल्म है इज्जत, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन था एसडी फरमन का।

श्रोताओं, अभी गर्मी बहुत है। आजकल गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, 40 के पार पहुंच गया है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो आपको लू से बचाव बहुत जरूरी है, और हमारे मोबाइल्स पर भी अलर्ट्स आ रहे हैं कि लू चलने की तेज संभावना है। तो आप लू से बचाव अवश्य रखिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, नारियल पानी, मट्ठा, नींबू पानी जैसे तरल पदार्थ लें। दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक सीधे धूप में जाने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, टमाटर जैसे शीतल और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ अवश्य खाएं।

पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप

0: शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
1: अमेरिका एंड इंडिया,
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal

0: आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
1: तो हीट वेव जो हमारे समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
0: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
1: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री, तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
0: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व तो क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
1: हीट वेव भी आजकल स्नो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव में चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, एनडीएमए या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
0: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और वो तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं, हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये 3 राज्य जो है पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से, दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा

0: कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आपको भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके

0: चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है। एलिनो के कारण तो आपका मॉनसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण। बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है। तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर्स के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है। एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है। तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रांग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट। उसके चलते हमने मॉनसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मॉनसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पर हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउकास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आपके इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, यूं तो आकाशवाणी हम सबके रोम रोम में बसा है। जब भी आकाशवाणी की यादें हमारे जहन में होती हैं, तो सफर हो जाता है इस प्यारी सी धुन के साथ, जो सुबह सुबह हम किसी भी रेडियो स्टेशन से सुनने से आरंभ करते हैं।

श्रोताओं, एक लंबा और गौरवपूर्ण सफर है आकाशवाणी का। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में शुरू हुआ और बाद में 1936 में आकाशवाणी नाम से पूरे भारत में अपनी सेवाएं देने लगा। इन 90 सालों में आकाशवाणी ने न केवल सूचना और समाचार हम तक पहुंचाए, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर, संगीत, नाटक, कविताएं, लोकगीत, लोक विधाएं, शिक्षा प्रद कार्यक्रम और जन जन तक पहुंचाए जागरूकता भरे कार्यक्रम। श्रोताओ, आकाशवाणी से जुड़ी कुछ खास बातों की हम चर्चा करें तो एक बहुत लंबी फहरिस्त हमारे सामने होती है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक आकाशवाणी ने देशभक्ति और जागरूकता के संदेशों को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मंच हो, लोकगीतों या नाटकों का मंच हो, या आपको अपने गीतों और कविताओं का प्रचार प्रसार भी हो, ये सब आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया। श्रोताओ, अगर हम बात करें आपदा और सूचना सेवाओं की तो इसके लिए आकाशवाणी सदैव से ही विश्वसनीय स्रोत रहा है। आपदाओं, मौसम और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां तुरंत रेडियो के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी आकाशवाणी ने। श्रोताओ, देश की लगभग सभी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित कर लोगों को दिल से दिल तक जोड़ने का काम किया हमारी प्यारी आकाशवाणी ने, यानी भाषाई विविधता को दूर किया और दिलों से दिलों तक मिलाया आकाशवाणी ने। आकाशवाणी ने रेडियो के माध्यम से हमारे चेहरों पर मुस्कान भरी, लोगों की जिंदगी में रंग बिखेरे, और ये सफर कितना सुहाना और कितना खुशनुमा है।

0: आकाशवाणी 90। श्रोताओ, आकाशवाणी की 90 साल बेमिसाल इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आकाशवाणी से जुड़े हुए हमारे श्रोताओं से हमने जाने उनके अनुभव, उनके विचार और उनकी यादें। आइए हम ले चलते हैं आपको अपने युवा साथियों की ओर, अपने श्रोताओं के विचारों की ओर और सुनते हैं आज फोन कॉल्स के माध्यम से हमारे श्रोताओं ने आकाशवाणी से जुड़ी हुई यादें हम तक किन शब्दों के माध्यम से पहुंचाई। आइए जुड़ते हैं उनके फोन इन से और उनके विचारों से। हेलो आकाशवाणी एट द रेट 90।
1: जी सर, हम ग्रामपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं, जिला
0: जी। संगीता जी, आज हमारा कार्यक्रम है, जैसा आप सभी जानते हैं, आकाशवाणी के 90 साल और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो आपके विचार हैं?
1: जी सर, हमारी यादें तो ऐसी हैं कि हम तो रेडियो से बहुत बचपन से ही जुड़े हुए हैं और हमको बहुत सीख मिलती है घर परिवार चलाने के लिए, खेती किसानी के लिए, और जानकारी देश विदेश की हर चीज की जानकारी मिलती है, मौसम के बारे में मिलती है और हर चीज के बारे में खबर मिलती है।
0: जी जी, और क्या क्या रेडियो से आपने सीखा है और इतने सालों में आपने क्या क्या हासिल किया आकाशवाणी से?
1: जी सर, हमने सब कुछ सीखा है क्योंकि हमको कम दिखता है सर जी, तो हम वैसे पढ़े लिखे तो है ही नहीं है, तो जितना भी जो कुछ हमने सीखा है तो रेडियो ही से सीखा है, बोलना
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और जो कुछ जीवन में जानकारी अब जरूरी होती है वो जानने के लिए और परिवार चलाने के लिए जो कुछ भी हर मतलब कुछ भी है वो हमने सब कुछ रेडियो से ही सीखा है सर जी।
0: संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे ही आप आकाशवाणी से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो
0: जी, आकाशवाणी छतरपुर से आकाशवाणी एट द रेट 90 के तहत हमारा कार्यक्रम है, बताइए कौन बात कर रहे हैं?
2: हम चंदमान नामदेव बोल रहे हैं, ग्रामपुर ऐसी, जिला छतरपुर
0: से। चंदमान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में और आकाशवाणी से जुड़ी आपकी यादों के बारे में?
2: आकाशवाणी बहुत बढ़िया चलती है, रेडियो में कार्यक्रम आते हैं, 90 साल पूरे हो गए आकाशवाणी के।
0: जी जी, आकाशवाणी छतरपुर के 7 अगस्त को 50 साल हो जाएंगे, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम बढ़िया, सब आते हैं, इससे एक लाजवाब 7 अगस्त 1976 स्थापना हुई थी अपने आकाशवाणी की। कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलता है, इससे ज्ञानकारी मिलता है और कई प्रकार के ज्ञान मिला, क्योंकि मनोरंजन बहुत बढ़िया है, इससे एक बढ़ के।
0: चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे ही आप आकाशवाणी से जुड़े रहें और खूब लाभ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
3: नमस्कार सर आपको।
0: नमस्कार, बाबू यादव जी, सारनाथ वाराणसी यूपी से।
3: जी सर जी, बिल्कुल सही आपने पहचाना।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा विषय है आकाशवाणी के 90 साल और छतरपुर आकाशवाणी के 50 साल।
3: जी, मैं कहना चाहूँगा कि भोजन हिताय भोजन सुखाय के साथ चलते हुए आकाशवाणी ने जिस तरह अपने 90 वर्ष का सफर पूरा किया और आकाशवाणी छतरपुर ने 50 साल अपने पूरे किए,
0: जी जी,
3: ये उनमें उनके उद्घोषकों की तमाम मेहनत है और उनका परिश्रम है और श्रोताओं का साथ साथ। तो सर, मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब आकाशवाणी केवल 2 घंटे मेरे बनारस में आता था, आकाशवाणी वाराणसी 2 घंटे का प्रसारण होता था और सर उसमें कैबिनेट में आता था लकड़ी के। उस दौर से लेकर और आज मोबाइल ऐप तक का मैंने सफर देखा है और एक दौर वो भी था सर कि आकाशवाणी को सुनने के लिए 15 रुपए सालाना महीना भी सालाना देना पड़ता था टैक्स गवर्नमेंट के लिए। तो उस सफर को देखा हूँ। उसके बाद सर फिर वो जमाना आया कि बिजली वाला जब रेडियो खत्म हो गया तो फिर ट्रांजिस्टर आ गया, तो उसका दौर चला और सर इस तरह चलते चलते आज सबसे बढ़िया मान के चलिए कि आकाशवाणी का सबसे सुनहरा दौर है जो मोबाइल ऐप आ गया है। आप किसी भी स्टेशन को, दुनिया के किसी भी स्टेशन को आप आराम से सुन सकते हैं बिंदास। तो सर बहुत अच्छा सफर है आकाशवाणी का और सभी उद्घोषक को, सभी आरजे को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा 90 वर्ष पूरा होने के लिए। और सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आकाशवाणी के लिए इतना लंबा सफर तय करना और आकाशवाणी छतरपुर के लिए भी तो मैं सर कहना चाहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं हैं आकाशवाणी के सभी आरजे और घोषक सब घोषक को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बाबू यादव जी, आपने बहुत अच्छे विचार हम तक पहुंचाए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार सर आप।
0: नमस्कार।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: जी नमस्कार
1: जी राजेश मिश्रा जी हरदोई गुजर जालौन से।
0: राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ, आप कौन सा?
1: मैं राजेंद्र अहिरवार बोल रहा हूँ राजेश जी।
0: हाँ राजेंद्र जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं। और आपके

0: मौसम कैसा है?
1: अरे मौसम का क्या है, बस ये समझ लीजिए कि बहुत तेज लू और बहुत तेज धूप का आनंद ले रहे हैं।
0: बहुत तेज लू है और बचाव के लिए देखिए मैसेज भी अलर्ट आ रहे हैं, हम सबको ध्यान रखना है। राजेश जी बिल्कुल, बहुत लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है और आज
1: जी,
0: आकाशवाणी
1: आज
0: के।
1: एक्चुअली मैं एक वो देख रहा था, रेडियो ग्रुप है
0: जी
1: उसको
0: जी
1: देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आकाशवाणी छतरपुर में आज आपकी बात हो सकती है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैंने कहा चलो हम अपना बीता हुआ समय याद कर लेते हैं इस तरह से एक बार फिर से।
0: जी, उसी बीते हुए समय को याद करके हम आपसे जानेंगे। वो एक दौर था, एक आज दौर है, आगे भी एक दौर रहेगा। तो रेडियो का क्या दौर रहा है, थोड़ा सा आप अपनी यादें साझा
1: देखिए,
0: करें।
1: मैं तो उस समय का राजेंद्र जी, मैं तो उस समय का श्रोता हूँ
0: जी
1: जब
0: जी
1: हम लोग ये जानते थे कि इसमें छोटे छोटे लोग घुसे हुए हैं अपना हारमोनियम तबला लेकर के गाने वाले। मैं तो तब का श्रोता हूँ ना, जब गांव में रेडियो नहीं होते थे तब का मैं श्रोता हूँ। मेरे यहाँ रेडियो था तो पूरे मोहल्ले के गांव के लोग सुनने के लिए आते थे। उसके बाद फिर जाना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वेब के जरिए आती है, फिर उसके बाद आकाशवाणी छतरपुर को जाना। और मूल रूप से हमारे यहाँ
0: जी
1: आकाशवाणी
0: जी
1: छतरपुर ही सुना जाता था। हम लोग मानते थे कि हमारे लिए रेडियो छतरपुर ही हमारा आकाशवाणी केंद्र है। और बुंदेलखंड का जो सांस्कृतिक है और ऐतिहासिक है उसको भी काफी कुछ हद तक लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो आकाशवाणी छतरपुर को है। तो इसके लिए आकाशवाणी छतरपुर बधाई का पात्र है और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि
0: जी
1: उसने लोगों को बहुत सी जानकारियां दी, ज्ञान मनोरंजन सूचना सारा कुछ पहुंचाया हम लोगों तक
0: जी जी
1: और उस जनता तक जो नहीं जान पाती थी कि कहाँ क्या हो रहा है, उसको हर चीज की जानकारी मिली।
0: बिल्कुल राजेश जी, कोई संस्मरण आपको याद आ रहे हो जब आप बचपन में रेडियो लेकर घूमते थे, तो कुछ ऐसे कोई संस्मरण हो, यादें हो जो हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाएं।
1: देखिए ऐसा है कि रेडियो लेकर घूमने वाला तो रेडियो नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ था उस समय बिजली से चलने वाला रेडियो, काफी बड़ा रेडियो था। तो
0: जी
1: शाम को 6:15 बजे, मुझे अभी तक याद है वो टाइम, शाम को 6:15 बजे लोकगीतों का प्रसारण होता था, बुंदेलखंडी लोकगीतों का प्रसारण आकाशवाणी छतरपुर से होता था। तो मोहल्ले के लोग और जो गांव के और शौकीन लोग थे वो आ जाते थे। और होता क्या था, कभी कभी उसी समय बिजली चली जाती थी तो लोग परेशान हो जाते थे, अपने अपने भगवान को याद करते थे कि हे भगवान लाइट आ जाए और हमको ये लोकगीत सुनने को मिल जाए। तो इतना क्रेज था आकाशवाणी का।
0: क्या कुछ है आप संदेश देना चाहेंगे जो आकाशवाणी जन जन की वाणी है? 99.9% माने एक आध परसेंट भी हो जहां ना पहुंचता हो, रेडियो हर जगह पहुंचता है, तो कुछ संदेश आपके हो, मैसेज हो।
1: देखिए रेडियो तो आज भी बहुत मतलब इतना सुलभ है और इतना सस्ता है, इतना मतलब पहुंच में है कि आप किसी भी जगह हो आपको सारी जानकारी सूचना ज्ञान मनोरंजन हर जगह उपलब्ध है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग रेडियो लेके नहीं जा पाते थे। तो एक और चीज हो गई है कि अब जो मोबाइल सबके हाथ में है, अब मोबाइल पे रेडियो है तो आप कहीं भी सुन सकते हैं और रेडियो से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि लोग सुनते हैं कभी कभी यूट्यूब पर गाने सुन लेते हैं, तो केवल गाने नहीं है रेडियो में,
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: में सब कुछ है। मतलब आपके लिए ज्ञान है, आपके लिए सूचनाएं हैं, आपके लिए मनोरंजन है, आपके लिए समाचार है। तो रेडियो चारों तरफ से हर तरफ से लाभकारी है और इसकी पहुंच पूरे देश में है, तो सुलभ है, तो इसकी बिल्कुल जानकारी से हमको लाभ लेना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। हमारा प्राचीन साधन है ये जानकारी का और मनोरंजन का, तो हमें इसको मतलब बढ़ावा देना चाहिए और इससे जुड़े रहना चाहिए।
0: बहुत अच्छे विचार आपने रखे राजेश जी, हम यही सभी श्रोताओं से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, ये आपकी वाणी है, आपकी आवाज है।
1: भले ही हम मोबाइल युग में हैं, लेकिन हमें रेडियो से भी जुड़े रहना है
0: जी
1: और
0: जी
1: उसको बढ़ावा भी देना है, और ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि रेडियो ने हमारे उन्नत होने में कितनी भूमिका निभाई है। आज के लोग नहीं जानते हैं, आज के बच्चे नहीं जानते हैं कि रेडियो क्या है, रेडियो की क्या भूमिका रही है समाज को आगे बढ़ाने में। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग बताएं बच्चों को कि ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल अभी आ गया है 5 साल से,
0: जी
1: 50 साल पहले रेडियो ही था। अगर कहीं कुछ होता था तो रेडियो के चारों तरफ लोग घेर के बैठते थे कि देखें क्या हुआ है, तो उसकी महत्ता के बारे में बताएं। और आज भी उसकी महत्ता बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इन सारी चीजों के बारे में हमें आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि वो इसकी महत्ता को जाने और इससे जुड़े भी रहें।

0: आकाशवाणी छतरपुर।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, मैं ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ सर।
1: जी जयपाल जी, आज हमारा विशेष कार्यक्रम है आकाशवाणी @90 और आकाशवाणी के 50 साल, हमारे छतरपुर केंद्र के भी 50 साल हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके जीवन में क्या योगदान रहा आकाशवाणी का?
0: बिल्कुल सर, और आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल पर मैं सभी आकाशवाणी, प्रसार भारती मंत्रालय एवं आकाशवाणी छतरपुर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। और हम आकाशवाणी छतरपुर से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सूचना, मनोरंजन और कृषि से संबंधित सभी जो भी जनोपयोगी जानकारियां हैं, हम उस पर बाखूबी से निभा रहे हैं। और रही यादें, तो मैं आकाशवाणी छतरपुर से कम मेरा अंदाज है कि मैं 35-36 साल से आकाशवाणी छतरपुर से जुड़ा हूं। इसका श्रेय मैं आकाशवाणी छतरपुर को इसलिए देना चाहता हूं कि हर आकाशवाणी में हम लोगों की पहचान हमें मिली है, वो आकाशवाणी छतरपुर से ही मिली है।
1: जी जी जयपाल जी, आपके जीवन में क्या योगदान रहे हैं, बचपन में क्या कुछ आप कैसे जुड़े रहे और क्या संस्मरण आपके हैं, कुछ बताना चाहें आप?
0: बिल्कुल सर, तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब छोटे से, जब मेरी उम्र शायद 8 वर्ष की थी, तब से मेरे बड़े भाई सुनते थे और तब से लेकर, और मैं कैसे मेरा

0: आकाशवाणी छतरपुर में रेडियो में कैसे नाम निकले, मेरी आवाज कैसे निकली बचपन की। तो हम दौनी एमपी में जाते थे तो उस डब्बे में पोस्ट कार्ड के जरिए आपकी पसंद जो भी फरमाइशी कार्यक्रम है जैसे भव्य कार्यक्रम, तो इसमें पत्र डालने का काम हम कम से कम 5 किलोमीटर दूरी पर जाते थे। तब पता चला कि इसमें थोड़ा विलम्ब आ रहा, 1 सप्ताह निकल गया नहीं आया, तो फिर हम लोग नौगांव जाकर के पत्र डालते थे, फिर वहां से सीधे छतरपुर डाकखाने में पत्र डालने जाते थे। और हमें लगातार इतना उत्साहवर्धन मिला कि अब हम क्या ही बताएं। वो आकाशवाणी छतरपुर से जो जानकारियां भारत सरकार द्वारा या कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती थी और मिल रही हैं, उन पर हम विशेष फोकस अपने जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जन जन तक पहुंचाने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं, जैसा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार को अपने जीवन में उतारते हुए और इसको निभाते हुए हम बहुत ही पुरानी यादें हैं हमें आकाशवाणी छतरपुर की, बड़ा अच्छा और लगातार आज भी हम आकाशवाणी छतरपुर के ऋणी रहेंगे और ऐसे ही मनोरंजन ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम सुनने को मिलते रहे।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जयपाल जी, और हम आप जैसे सुधी श्रोताओं का सम्मान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यादें आपकी हैं और ऐसे ही जुड़े रहें आप आकाशवाणी छतरपुर से और देश के तमाम केंद्रों से। हमारी यही आपके प्रति शुभकामनाएं हैं और खूब ज्ञान मनोरंजन में वृद्धि करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी।
0: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार। हेलो आकाशवाणी छतरपुर
2: जी। नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार
2: जी। मैं ग्राम परमौली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदीन अहरवाल बात कर रहा हूँ सर।
1: जी देवीदीन जी, बताइए आकाशवाणी के 90 साल और छतरपुर आकाशवाणी के 50 साल इस पर एक केंद्रित कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: सर जी मैं कहना चाहता हूँ कि वो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो जो आकाशवाणी से हमको एक शिक्षा मिली है या कुछ भी चीज कह लो आप
1: जी,
2: और हमारे बाप दादा भी सुनते रहे, इसके बाद हम भी सुन रहे, और आकाशवाणी से हमको इतना लाभ मिला है चिकित्सक से लेके खेती के सनाई से लेके, और जो भी लाभ है बहुत लाभदायक हुआ है
1: जी। बहुत बढ़िया आपने बताया देवीदीन जी, और कार्यक्रमों से क्या लाभ आपको मिल रहे हैं कुछ बताइए अभी।
2: कार्यक्रमों में से सर जी बहुत है, जैसे मान लीजिए खेती किसानी का आता है और मन भावन आता है, जो फिल्मी गाने हैं और रामतुला कार्यक्रम आता है, आपकी पसंद जितने भी कार्यक्रम आते हैं सबसे लाभ भी मिलता है और हमारे पूरे परिवार का मनोरंजन होता है, उससे हमें सीख भी मिलती है।
1: जी जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं देवीदीन जी, और हम उम्मीद करेंगे आप लगातार रेडियो से जुड़े रहेंगे और अपने पसंद के कार्यक्रमों के साथ अपना ज्ञानार्जन और अपने मनोरंजन में ऐसे ही बढ़ोतरी करते रहेंगे।
2: आशा करते हैं कि आकाशवाणी छतरपुर से जो भी कार्यक्रम आते रहेंगे और हम श्रोताओं के बीच में उपलब्ध ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात होती रहेगी, और हम यही कामना करते हैं कि आकाशवाणी सदा तत्पर रहे और हमारे विचारों को बराबर श्रोताओं के बीच में कार्यक्रम देती रहे, बहुत खुशी की बात है हमको।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवीदीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, दीपचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: हाँ दीपचंद जी, बहुत स्वागत है, और आकाशवाणी के 90 साल आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल बेमिसाल, क्या कहना चाहेंगे दीपचंद जी?
3: सर सबसे पहले तो आकाशवाणी छतरपुर को 50 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सभी को भी शुभकामनाएं, आप सभी की वाणी है आकाशवाणी और आपके अनुभव आपके विचार।
3: छतरपुर के जितने हमारे श्रोता मित्र हैं
1: जी जी,
3: जो आकाशवाणी छतरपुर को यहाँ तक करके लेके आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं सर
1: जी। क्या अनुभव है आपके और क्या जीवन में जो आपने हासिल किया है वो क्या विचार आप कहना चाहेंगे?
3: सर आकाशवाणी छतरपुर से सर मैं, क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं वहाँ पर, राजीव यादव जी है, जिनके द्वारा आपके चैनल का हमें पता चला रेडियो के बारे में।
1: जी जी।
3: तो मैं, लेकिन अनुभव बहुत बढ़िया है सर, मतलब इतने अच्छे प्रोग्राम और इतने हमारे जो कहना चाहिए आरजे हैं, जो सर इतना हमारे बातों को ध्यान दे करके और अच्छे से सुन करके सर जो हमारी कुछ फरमाइश रहते हैं उनको पूरी भी करते हैं, तो ये सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव हुए आकाशवाणी के कार्यक्रमों से, कुछ यादें आपकी जुड़ी हूं?
3: मैं एक सीनियर सिटीजन हूं सर, और सीनियर सिटीजन के अलावा सर 6 साल मुझे ऊपर हो गए हैं, तो आकाशवाणी से सर मैं लगभग 50 से 55 सर वर्षों से जुड़ा हुआ हूं।
1: वो एक दौर था, उस दौर में कुछ यादें जुड़ी हूं, कैसे हम रेडियो के पास बैठते थे
3: सर, जब हम बचपन में देखा करते थे कि कहीं पूरे गाँव में या कहना चाहिए पूरे जो आपके आसपास का जो घरों रहते थे उसमें कहीं एक आध रेडियो मिलता था सर हमें देखने को और सुनने को, और सर एक जमाना था सर जब लोग एक कंधे पे अपने एक बच्चे को बैठा लें दूसरे कंधे पे रेडियो टांगे हुए हैं, तो कहीं बाजार जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, लोगों को मैं साइकिल पे देखता था। और सर हम लोग भी कई बार अपना अनुभव किया सर, हम लोगों ने ट्रेनों में भी ये रेडियो चलाए हैं।

0: आधा रेडियो खिड़की के बाहर रहता था, आधा रेडियो खिड़की के अंदर रहता था, और एरियल से हम लोग ये मतलब रेडियो सुनते थे सर। तो वो जो चीजें थी सर
1: जी जी,
0: और जो आनंद था सर, वो आनंद अब नहीं मिलता सर हमें।
1: देखिए डिजिटल दौर आया है और इस दौर में भी न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप देश दुनिया में जुड़ रहे हैं, और समय बदलता है और तकनीकी बदलती है, बस हमें थोड़ा सा और करीब से जुड़ना होगा, तब हमें और बेहतर रूप से लगने लगेगा।
0: जी जी जी सर, जो कहना चाहिए, जो दिलचस्पी है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। और कहना चाहिए सर, उस जमाने में जो आने सर, मतलब मेरा ये कहना है कि रेडियो तो है सर, लेकिन सर कहते ना सर, जो चीज आसानी से मिल जाए उसका मजा उतना नहीं आता है।
1: हम सबको थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, सब तक पहुंचाएं, जानकारी दें ताकि लोग जुड़े और खूब बेहतर रूप से रेडियो सुने।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा दीपचंद जी, आपने अपने अनुभव साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
0: जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
1: हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
0: जी जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के 50 साल छतरपुर केंद्र के और आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल, क्या अनुभव आप कहना चाहेंगे?
1: सर्वप्रथम जो हमारी बचपन से लेके आज तक हमारी साथी रही है आकाशवाणी केंद्र छतरपुर, उसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आप सभी को आत्मीय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तमाम श्रोताओं को भी इस खास मौके पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। रेडियो जादू का पिटारा है सर हमारे लिए, बचपन से हमारा साथी रहा।
0: जी जी जी।
1: गीत संगीत, किस्से, कहानियां, ज्ञान की बातें, सब कुछ इसी में था और आज भी और अब भी है हमारे साथ। आकाशवाणी केंद्र छतरपुर आज भी पीढ़ियों की स्मृतियों में रेडियो की मधुर धुनें गूंजती है सर। रेडियो आज भी लोगों का एक भरोसेमंद दोस्त बना हुआ है। सूचना, आपदाओं, आपातकालीन हालत या सरकारी संदेशों के द्वारा रेडियो ने अपनी तुरंत और वास्तविक जानकारियां जनमानस तक पहुंचाकर अपनी अहमियत को साबित किया है। जहां तक मेरे रेडियो सुनने का और आकाशवाणी से जुड़ने का मेरा जो सौभाग्य है वो मुझे मेरे पूज्य दादा श्री से मिला। मुझे प्रेरणा मुझे दादाजी से मिली। वो अक्सर आकाशवाणी केंद्र छतरपुर के श्रोता हुआ करते थे। आज वो भले हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों की वजह से ही और उनकी आकाशवाणी से जुड़ने का मेरा जो सौभाग्य है वो मुझे मेरे पूज्य दादा श्री से मिला। मुझे प्रेरणा मुझे दादाजी से मिली। वो अक्सर आकाशवाणी केंद्र छतरपुर के श्रोता हुआ करते थे। आज वो भले हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों की वजह से ही और उनकी प्रेरणा से ही हम आकाशवाणी केंद्र छतरपुर से जुड़े। मेरे पूज्य पिताजी ने वर्ष 1978 में मुझे बुश कंपनी का एक रेडियो दिलाया था।
0: जी,
1: वर्ष 1978 की बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब मेरी उम्र महज 8 वर्ष की थी। शुरुआती दौर में आकाशवाणी छतरपुर का प्रसारण सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ। शुरुआती दौर में सुबह की सभा, बाद में दोपहर की सभा और शाम की सभा नियमित रूप से सुनने लगा। आकाशवाणी छतरपुर का प्रसारण साफ और स्पष्ट सुनाई देता था।
0: जी।
1: मैं

0: केंद्र के कार्यक्रमों को काफी अधिक सुनता था यहाँ की कार्यक्रम।
1: जी जी, बहुत महत्वपूर्ण विचार चंद्रेश जी। कुछ यादें, कुछ संस्मरण जब आप कहीं यात्रा कर रहे हो या कहीं गए हो, उस संदर्भ में भी।
0: केंद्र से जुड़ने के बाद जब हम इस केंद्र के फरमाइशी कार्यक्रमों में जुड़े और जब इस केंद्र से हमारे फरमाइशी नाम आने लगे,
1: जी जी,
0: तो हमारे देश के अनेक प्रांतों में हमारे इस आकाशवाणी छतरपुर के प्रसारण के माध्यम से असंख्य श्रोता बने।
1: जी,
0: और असंख्य श्रोता बने तो एक बार का वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रेडियो है जो आज मुझे, और आकाशवाणी छतरपुर ही है जो आज मुझे इस मुकाम पर लाया। आज देश के हर कोने में मेरे चेहरे से नहीं परिचित होंगे लेकिन मेरे नाम से जरूर परिचित।
1: बिल्कुल, बहुत नाम है और एक पहचान है। आज की युवा वर्ग से, श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, हम कैसे रेडियो को अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे जो अपने लक्ष्य हैं उसमें रेडियो के कार्यक्रम आपके मददगार हो सकते हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मैं इस जो युवा श्रोता भाई है जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उनसे बस ये भी कहूंगा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो आकाशवाणी और आकाशवाणी छतरपुर की ही देन है, क्योंकि इसके प्रसारण से के कार्यक्रमों को सुनकर मैंने जो ज्ञान अर्जन किया वो हमारे जीवन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ, और आज मैं जो भी हूँ उसमें एक बहुत अमूल्य योगदान आकाशवाणी केंद्र छतरपुर का है। तो मैं तो तमाम युवा साथियों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि रेडियो से सूचना, ज्ञान, विज्ञान और कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। अगर आप उन्हें उन जानकारियों को सुन के आत्मसात करेंगे और ग्रहण करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो आपको आगे जीवन में बहुत मतलब एक मदद का काम करेंगे और आपको आगे बढ़ने की हौसला और प्रेरणा देंगे।
1: जी जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे और उम्मीद करते हैं ऐसे ही लगातार आप आकाशवाणी से जुड़े रहेंगे और ऐसे ही आपका स्नेह रेडियो के प्रति बना रहेगा। बहुत बहुत आभार।
0: आकाशवाणी छतरपुर से जुड़ने के साथ मेरा एक सौभाग्य ये भी रहा, मतलब उसका फायदा आकाशवाणी छतरपुर से और रेडियो से जुड़ने का एक सौभाग्य हुआ
1: जी,
0: कि रेडियो के माध्यम से ही मेरा विवाह संपन्न हो पाया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है।
0: ये मतलब बहुत बड़ी चीज है, उसमें रेडियो की एक बहुत अहम भूमिका है कि इस रेडियो के माध्यम से ही मुझे मेरा जीवन साथी मिला और आज मैं जो कुछ हूँ उसमें एक मेरे जीवन साथी का भी बहुत बड़ा हिस्सा।
1: बिल्कुल, हम ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये जो स्वर लहरियां हैं और ऐसे ही आपका जीवन प्रसन्न रहे और हम सब पर ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे, आप रेडियो से लगातार जुड़े रहें और इसी तरह आप दूसरों के प्रेरणा स्रोत भी बने रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे राजेंद्र जी बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी छतरपुर को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा कि 90 वर्ष पूर्ण होने पर और आगामी आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष जो पूर्ण होने जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में श्रोताओं को एक सूत्र में बांधने और एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से वो काबिले तारीफ है।

0: 90. हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
1: नमस्कार, मैं गुजरात से धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाशवाणी के 90 साल, आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल, क्या विचार हैं आपके?
1: सर, आकाशवाणी की 90 साल की प्रसार यात्रा में हमने युवाण कार्यक्रम सुना है, बहनों का कार्यक्रम सुना है, किसान भाइयों का कार्यक्रम सुना है और सुनते भी है, और विज्ञान के कार्यक्रम है और कई कार्यक्रम है जिसके जरिए हमें ज्ञान तो मिलता है, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिलता है। और आकाशवाणी का जो प्रदान है 90 साल के, तो उसके काबिल कोई और कोई माध्यम है नहीं। और आकाशवाणी सुबह 5:55 से लेकर रात को 11:10 तक जो अपनी सेवाएं बरकरार रखती है, तो उसका श्रोता अपनी तरह से लाभान्वित होता है। अपने जो भी कार्य है तो वहाँ भी अपना पहले रजिस्टर था, अब मोबाइल ऐप पर सुनता है और कई विषय जाता नहीं पड़ता है ये कार्यक्रम सुनने के लिए। इसके लिए हम ज्यादातर आकाशवाणी को ही पसंद करते हैं। सर
0: जी जी, और क्या अनुभव आपके रहे जीवन में रेडियो को लेकर, क्या कुछ आपकी यादें जुड़ी?
1: आकाशवाणी के जरिए से हमें बहुत सीखने को मिला है हमारे जीवन जीने की शैली में, फिर किसानी में, फिर कोई और जगह भी आकाशवाणी में बहुत प्रदान है उसका। अगर जनरल नॉलेज देखा जाए तो और कई जगह पर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आकाशवाणी से हमें जो समाचार मिलता है वो भी सत्यता भरा हुआ होता है, और भी कई जानकारी है बिल्कुल ठोस होती है, और इसके जरिए हमारे जीवन में कई जगह पर आकाशवाणी की महत्ता है वो काम में लगी है। सर
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे और इसी तरह हम उम्मीद करेंगे आप आकाशवाणी सुनते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे।
1: जी जी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हेलो आकाशवाणी छतरपुर।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार,
2: मैं रानी दिल्ली छतरपुर से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ सर।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है रशीद जी, अगर आप फोन ना करते तो मैं घर आने वाला था।
2: थैंक यू सर।
1: आकाशवाणी के 50 साल बेमिसाल और आकाशवाणी जो अस्तित्व में आई, आकाशवाणी के 90

0: साल। क्या कहना चाहेंगे रशीद जी, आप नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, आकाशवाणी से आपकी कई यादें जुड़ी हैं, कुछ यादें, कुछ संस्मरण और कुछ सुझाव आपके।
1: जी, ज्यादा अगर 90 साल की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 55 साल तो मैंने ही देखे हैं 90 साल में से।
0: जी जी,
1: ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, अगर अपने छतरपुर की अपन बात करते हैं,
0: जी
1: है ना, तो छतरपुर के तो 7 अगस्त 1976 का मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ आकाशवाणी का, जब उद्घाटन हुआ था, ठीक है, स्कूल की तरफ से हम आए थे और सारे लोगों से जब मतलब पूरे प्रोग्राम देखे हमने, और जब से ही लगातार पूरी यादें जुड़ी हुई हैं।
0: तो आपके बचपन में जब आप उस समय पढ़ते थे तब आकाशवाणी का क्या योगदान रहा, और व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो आपने कार्यक्रमों से भी खूब जुड़े रहे आप, तो उस संदर्भ में कुछ बताइए कैसे उस समय कार्यक्रम होते थे और रेडियो का क्या दौर रहा है, ये भी जानना चाहेंगे।
1: जी जी जी, पहले आपको एक बात और हम ये बता दें कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, रेडियो रखने का पहले लाइसेंस लगा करता था।
0: जी जी जी जी,
1: है ना, तो वो लाइसेंस के दौर में भी हमने रेडियो रखे हैं और रेडियो सुने हैं। बाल मेला में आते थे तो स्टूडियो में बैठ के आराम से सब प्रोग्राम देते थे हम लोग।
0: जी,
1: इसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, विद्यार्थी जीवन था, कॉलेज में आ गए, युवाणी में भी हम लोग पार्टिसिपेट करने लगे। फिर धीरे धीरे जब बाहर पढ़ने के लिए गए, जबलपुर गए, तो वहां जो आकाशवाणी जबलपुर से जुड़े रहे, वहां भी स्टूडियो में भी बैठ प्रोग्राम दिए। फिर नौकरी में आ गए तो सरगुजा अंबिकापुर जिले में मेरी पोस्टिंग हुई, तो अंबिकापुर स्टूडियो से भी मैंने प्रोग्राम, मतलब आकाशवाणी ने लगातार हमें अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया, और जो कुछ भी हमने सीखा अपने जीवन में आकाशवाणी से ही सीखा, ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, जो भी एक अनुशासन जिसको कहें, वो हमें आकाशवाणी से ही मिला था।
0: जी जी बिल्कुल, और आपके जीवन में क्या योगदान आकाशवाणी का रहा है, आकाशवाणी का योगदान भी हम जानना चाहेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से नौकरी में आए तो उस समय भी जो ज्ञान, सूचना, मनोरंजन के लिए हमारे प्रसारण कर्मी लगे रहे और भी तमाम केंद्रों से आप जुड़े रहे, तो क्या महत्वपूर्ण रोल रहा आकाशवाणी का?
1: आकाशवाणी के साथ सबसे महत्वपूर्ण रोल ये रहता है कि वक्त के हिसाब से जो भी समसामयिक घटनाएं होती है, जो भी न्यूज है, जो भी चीजें होती है, वो रेडियो से तुरंत हम लोगों को मिलती है सर।
0: जी जी,
1: है ना, पूरी विश्वसनीय रहती है न्यूज, है ना, तो उसका हमें बहुत मतलब फायदा मिला पढ़ने में भी। और आपको सब मैं एक चीज बताऊं कि लोग कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते मतलब पढ़ने में डिस्टर्ब होते, लेकिन कुछ नहीं, मैं अपने साथ हमेशा रेडियो रखता था और बराबर मतलब रेडियो बहुत स्लो करके अपना मतलब पढ़ता रहता था, कभी मतलब मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हुआ। और आज भी वही चीज है कि आज भी मतलब मैं भले टीवी देखूं, सब कुछ करूं, लेकिन रात को जब मैं लेटता हूं तो न्यूज जो 11 बजे आती है उसको सुन के ही मैं लेटता हूं। तो रेडियो ने जो इतना सुकून लाइफ में दिया है, उसके दूसरे शब्दों में अपन कहना कि नाम, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिला, वो एक रेडियो का श्रेय है। पुराने जमाने में अपन याद करें, अमीर सयानी साहब की आवाज सुन सुन के हम लोग बड़े हुए, नाटक गीतमाला चला करता था, रेडियो सिलोन से भी मतलब हम लोगों के पत्र निकलते थे, बीबीसी लंदन तक से मेरे पत्र निकले सर। कोई एक समय यह था कि देश की तमाम आकाशवाणी केंद्रों से मेरे पत्र निकला करते थे। आज ये है कि जहाँ जहाँ संपर्क हो पाता फोन से हम संपर्क करते हैं। आज भी मतलब आकाशवाणी को उतने ही शिद्दत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हो सर, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग सब आप लोगों के कार्यक्रमों को सराहें, और ताकि आप लोगों का हौसला बढ़े और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप लोग दें, है ना।
0: बहुत मेहनत करते हैं सर आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने रखे, विचार रखे, और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही आप लगातार रेडियो से जुड़े रहें और खूब अपना स्नेह आकाशवाणी के प्रति बनाए रहें
1: सर।
0: धन्यवाद,
1: ठीक है, ओके सर।

0: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार तोमर साहब
0: जी, मैं ग्राम तरसुमा जिला अमराना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: तोमर जी, क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल बेमिसाल और आकाशवाणी के 90 साल, क्या अनुभव और क्या संस्मरण, क्या विचार आपके हैं?
0: सर जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के विषय में कुछ कहना चाहूंगा।
1: जी स्वागत है, स्वागत।
0: 8 जून 1936 को अपनी आधिकारिक शुरुआत के बाद 90 वर्ष पूरे कर गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। वर्ष 1957 में आकाश ऑल इंडिया रेडियो को औपचारिक रूप से आकाशवाणी का नाम दिया गया। इसके मुख्यालय का नाम आकाशवाणी भवन रख दिया गया। तब से लेकर आज तक आकाशवाणी दिन प्रतिदिन निखरता हुआ अविरल गति से चलता हुआ आज इस मुकाम पर आ पहुंचा है। यद्यपि दूरदर्शन जैसे मनोरंजन के कई साधन भी आए, किंतु आकाशवाणी सबके सामने अड़िग बनकर खड़ा रहा। इसकी विश्वसनीयता कभी कम नहीं हुई। इसकी महत्ता, उपयोगिता व विश्वसनीयता को हम कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहेंगे।
1: जी स्वागत है हरिविलास जी।
0: रेडियो का अनुभव होता बड़ा निराला, इसको समझ सकेगा केवल सुनने वाला। सूचना शिक्षा मनोरंजन की त्रिवेणी अविरल बहती रहती है। अंधकार अंतर मन का मिट जाए आलोकित करती रहती है। रेडियो हमें जीना सिखलाए, तन मन में उल्लास जगाए। जीवन के क्षण जब जब विघटित हो जाते, तना रहकर कुछ समझ न पाते। चेतना की किरण तब बने रेडियो जीवन पथ पर बढ़ना सिखलाए। सबसे सस्ता सुलभ रेडियो भोजन सुखाए, भोजन हिताए को माने। सटीक सूचना देता रेडियो, बाक पटता बाक चातुर्य सिखलाए। मिठास विनम्रता वाणी में लाए, कुशाग्रता का पाठ पढ़ाए। सीमाओं का बंधन ना माने, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए। मित्र मंडली बेशुमार बनाता, वाद विवाद संवाद सिखाता हमें रेडियो। बच्चे बूढ़े मजदूर किसान सबको मिलता इससे ज्ञान।

0: हेलो, आकाशवाणी छतरपुर।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर केंद्रा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश
0: जी। सर ओम प्रकाश नेमा जी, बताइए आकाशवाणी से जो यादें आपकी जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आकाशवाणी की यादें तो बहुत ज्यादा हैं, बचपन से यादें हैं, जो बचपन से जो धुने उनकी सुनते आ रहे हैं ना, आकाशवाणी की जो आकाशवाणी से जो धुने बजती है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो धुनों से इतने ज्यादा मांड में हुए हैं कि उन धुन बजती है तो उससे हम समझ जाते हैं कि टाइम अभी कितना हुआ होगा, कौन सा कार्यक्रम आने वाला है। सर बिल्कुल घड़ी का काम करती हैं धुने।
0: जी जी जी, आपके जीवन में क्या योगदान रहा हूँ प्रकाश जी?
1: हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये रेडियो से, रेडियो प्रेमी ज्यादा हैं और रेडियो हमारी दुकान में रखा ही रहता है, सुनते ही रहते हैं सर।
0: हेलो आकाशवाणी छतरपुर,
2: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ। बंधु, आकाशवाणी छतरपुर को 50 साल पूरे होने की वर्षगांठ पे मेरे और पे सभी को हार्दिक पुरकुलूस मुबारकबाद। आकाशवाणी तो मेरी बचपन से, मैं 1957 से जुड़ पाया हूँ, क्योंकि उसके पहले ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर हिंदी फिल्मी गानों का बंदी थी, बैन था, मगर जब नरेंद्र शर्मा जी ने अपने विविध भारती की 1957 में स्थापना की और विविध भारती के ऊपर हिंदी गानों का प्रचलन शुरू हुआ और तब से मैं

विविध भारती से जुड़ा हूँ। भारतवर्ष के विभिन्न केंद्रों के माध्यम से मेरी वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान तथा अपने मन चाहे गीत सुनने का प्रसंग मुझे बहुत बार मिलता है। यह मुझे बेहद खुशी का एहसास होता है।

0: AIR at 90. श्रोताओ आकाशवाणी छतरपुर आगामी 7 अगस्त को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। 7 अगस्त 1976 से आकाशवाणी छतरपुर का शुभारंभ हुआ और बुंदेलखंड की सुरीली धड़कन के रूप में आकाशवाणी छतरपुर हम सबके घरों में गूंजा। बुंदेली के लोकगीत हो, बुंदेली काव्य पाठ हो, कविताएं हो और हिंदी उर्दू और जो विधाएं क्षेत्रीय लोकगीतों को सहेजने में सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी आवाजें आप तक पहुंचना यानी दिल से दिल तक का रिश्ता निभाया आकाशवाणी छतरपुर ने। श्रोताओ ये था आकाशवाणी एट द रेट 90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 साल। उम्मीद करते हैं आकाशवाणी से आप जुड़े रहेंगे और अपने यादों में आकाशवाणी को बसाए रखेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र हरवार को, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के अवसर पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति थी रविन्द्र कुमार प्रजापति के सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी में समाचार, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच

0: भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से